नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड रेडियो पर। साथ ही साथ यूं हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज़ यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज़, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो, या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है,

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनो ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लईने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि आपड़े जे किसान भाई बोन है ये संतुलित उर्वरकों नु प्रबंधन हेते करी शके। आज आपड़े जानंगा कार्यक्रम ने माध्यम तक कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन नो हूँ मतलब है आ केम जरूरी है ने वधारे असंतुलित उर्वरकों नु आपड़े प्रयोग कर दो तो अंत की हूँ नुकसान था ने समाधान ना हूँ उपाय थी शके। तो वाते अमारी आप तकी कार्यक्रम में घना कानी थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमारे रहू आप रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બાઈન બોનું ગીત તો આઈશું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ બોનો, અમે આપને ગીત કે પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે આપણે સંતુલિત ઉર્વરકોનું પ્રબંધન હેતે કરી શક. તો આના વિશે માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી માંગીલાલજી. તો સૌથી કે પહેલા આપણે હામરી લેણાની વાતે ને મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: જી ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ સંતુલિત ઉર્વરક કા પ્રબંધન કો લેકર. જાનેંગે આજ કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે કે કિસ તરીકે સે હમારી જો મિટ્ટી હૈ વો સંતુલિત ઉર્વરક કે માધ્યમ સે સ્વસ્થ ઓર ખુશહાલ રહે સકતી હૈ. તો જૈસા કે આજ કાર્યક્રમ મેં હમારી આપસે ઇસ વિષય પર બાતચીત રહેને વાલી હૈ તો સબસે પહેલે આપ હમે યહી બતાઈએ કે સંતુલિત ઉર્વરક પ્રબંધન ક્યો આવશ્યક હૈ.
1: तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है और वर्तमान की आवश्यकताएं हैं जो इस विषय पर बहुत है और इस विषय पर ध्यान आकर्षित करना किसान भाइयों का और समाज का बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: तो देखिए जैसे मिट्टी है तो उसको हम समझते हैं कि वो केवल फसल का माध्यम है, लेकिन ऐसा नहीं है. बल्कि अगर मिट्टी को हम देखते हैं तो एक जीवित प्राकृतिक संसाधन है. तो जिस प्रकार मनुष्य को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मिट्टी को भी संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है. यदि मान लो खेत में एक ही प्रकार के उर्वरक बार बार उपयोग करते हैं या वो भी अगर रासायनिक हो तो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो घटने लगती है
0: जी जी.
1: और उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं या उसके अंदर जो पौष्टिकता है वो धीरे धीरे खत्म होती है, जिसके कारण उत्पादन की लागत एक तो बढ़ जाती है, दूसरा है कि पर्यावरण है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन है उसका अर्थ अगर सामान्यतः देखें तो मिट्टी की आवश्यकता, फसल की जरूरत और उपलब्ध स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जैविक प्राकृतिक और रासायनिक उर्वरकों का उचित मात्रा में उपयोग करना.
0: बिल्कुल.
1: जहाँ पे हम बात करते हैं जैसे मिट्टी पोषण की, तो मिट्टी का पोषण है उसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है आपका उर्वरक, और उसमें भी वो है कि कौन से प्रकार का उर्वरक है वो आप उपयोग कर रहे हैं.
0: जी जी.
1: अगर आप एक ही प्रकार का रासायनिक जैसे अभी चलन में आ रहा है डीएपी यूरिया है, अगर आप इस तरह के खाद उपयोग करते हो तो आपकी मिट्टी है वो धीरे धीरे खराब होगी, उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाएगी और आपका उत्पादन है वो भी उतनी मात्रा में नहीं होगा.
0: बिल्कुल
1: जी. तो इस तरह से हमें को समझा जा सकता है.
0: जी हाँ सर, आपने सही कहा. जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन क्यों आवश्यक है, यही अब बात आती है कि असंतुलित उर्वरकों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं?
1: जी देखिए, संतुलित और असंतुलित की हम बात करते हैं तो अगर संतुलित देखा जाए तो मिट्टी की उर्वरकता है वो लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे हम देसी खाद का उपयोग करते हैं, फसल की उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ती है आपकी, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, खेती में आपकी लागत है वो कम हो जाती है क्योंकि आप परंपरागत खाद का उपयोग कर रहे हो.
0: जी जी.
1: भूमि में जो जैविक कार्बन है वो बढ़ता है और जो सूक्ष्म लाभकारी जो जीव होते हैं वो आपके सुरक्षित रहते हैं, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और किसानों की आय है वो स्थिर रहती है, वो सस्टेनेबल रहती है. तो इसी तरह हम बात करते हैं जैसे असंतुलित उर्वरकों की, तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपकी मिट्टी है वो सख्त और बंजर होने लगती है.
0: जी हाँ.
1: अगर आप जो है एक ही प्रकार का डालेंगे, आप रासायनिक का उपयोग करेंगे तो इस तरह की समस्या हो जाती है, धीरे धीरे आपका उत्पादन घटते चला जाता है. इसी तरह उत्पादन के साथ साथ में जो कीटों का प्रकोप है वो बढ़ जाता है.
0: बिल्कुल.
1: तो वो भी आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है. इसके साथ ही जब आपकी जमीन बंजर हो जाएगी या फिर उसमें पोषण की कमी होगी तो उसको सिंचाई की आवश्यकता बढ़ जाती है.
0: जी जी.
1: दूसरा है, देखा जाए तो फसल की जो गुणवत्ता है, जो उसके अंदर पोषक तत्व है, उनकी मात्रा भी कम हो जाएगी.
0: बिल्कुल.
1: इसके साथ में जो आपकी खेती है उसकी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप परंपरागत खाद की जगह रासायनिक का उपयोग करते हैं तो बहुत प्रकार के आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है, तो आपकी जेब भी भारी पड़ेगा.
0: बिल्कुल.
1: तो इस तरह से दूसरा है कि आपका धीरे धीरे क्या पर्यावरण है, तो पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है जिसके कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. तो जैसा कि आपने हमें बताया कि असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से क्या नुकसान है, इसे संतुलित करने के लिए हमें कौन कौन से उपायों को अपनाने की जरूरत है?
1: देखिए उपाय है वो हमारे पास में है, कहीं दूर नहीं है, हमारे समुदाय के पास में है, बरसों से हमारे पूर्वज है उनको अपनाए हैं, हमें वापस से उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए, उनको देखना चाहिए. जैसे हम बातचीत में हमने कहा कि देसी खाद, देसी खाद की आप बात करते हैं तो जैसे आपका गोबर खाद है,
0: बिल्कुल,
1: तो आप गोबर खाद है उसका उपयोग कीजिए, जो राख वगैरह जो हमारे निकलती है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे हरे पत्तों की खाद जिसको हम हरी खाद बोलते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जंगल में जो सूखी पत्तियां होती है उनसे आप कंपोस्ट कर सकते हैं, जिसमें अभी हम उकेड़ा जैसे हम कह रहे हैं तो उकेड़ा के माध्यम से आप उसको कंपोस्ट कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के बेड बना सकते हैं आप, इसके लिए सरकार भी आपको सहायता देती है और जो हमारे संस्थाएं हैं वो भी मार्गदर्शन देती है सभी किसान भाइयों को।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ में हमारे जो हांगणी खेती है उसको हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हांगणी से कई प्रकार का जो खाद है वो आपकी मिट्टी को मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: तो वो उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। जो दलहनी फसलें हैं उनका समावेश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एक जो फसल आपने कर दी। और दूसरा कि जो खेत की मेड़ों पर है वो घास हम लगाते हैं या घास होती है या फिर हमारे जो भी अवशेष होते हैं खेतीबाड़ी के, उनको भी आप कंपोस्ट करके या फिर आप मिट्टी में फैला के उनकी जुताई कर सकते हो।
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो आसान तरीके हैं जो हमारे पूर्वजों ने भी अपनाया है और इससे आपकी मिट्टी है उसकी पोषकता हमेशा लंबे समय तक बनी रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: और किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव है उस पर नहीं पड़ेगा, तो ये हमें करना चाहिए। इसके साथ में कभी कभी हमारे जो किसान भाई है उनको मिट्टी का टेस्ट कराना चाहिए कि मिट्टी की आवश्यकता क्या है, उसमें पोषक तत्व कैसे हैं, तो एक जो पिक्चर है वो आपको सामने निकल कर आएगी और कराना चाहिए, पूरी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी आपको, तो आप अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। दूसरा, आप जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि केंद्र है वहाँ पे आप करा सकते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह से हमें करना चाहिए। दूसरा, इसी में मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाई जो है हमेशा जो मिट्टी का प्रशिक्षण जो करते हैं तो प्रशिक्षण के बाद में क्या हो कि पता लग जाएगा आपको, तो उसके अनुसार आप खाद का उपयोग करें।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ पे जैविक खाद जो है आप उसका नियमित उपयोग करें, उसको डालें, और रासायनिक जो खाद है वो आप बिल्कुल उनका उपयोग ना करें
0: जी जी,
1: ताकि इस तरह की समस्याएं पैदा ना हो। हरी खाद का आप उपयोग करें, इसके साथ में जो हमने फसल चक्र की बात की उसको आप बदल बदल कर अपनाएं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार से करते रहें, तो ये जो चीजें हैं। दूसरा, जैव विविधता का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई प्रकार के कीट और सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी मिट्टी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए। तो जब अगर किसान भाई रासायनिक का उपयोग करेंगे तो जो जीव है वो नष्ट हो जाते हैं और उसके कारण उस मिट्टी का जो पुनः जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो मिट्टी क्या होती है, गाढ़ी हो जाती है। आप देखोगे कि बारिश होती है तो मिट्टी एकदम पत्थर की तरह हो जाती है, तो उसका कारण यही है कि आपने रासायनिक बहुत उपयोग किया, मिट्टी बुरबुरी नहीं रहती है
0: जी। हाँ,
1: जबकि आपकी मिट्टी जितनी बुरबुरी रहेगी, जितना देसी खाद डालोगे उत्पादन उतना अच्छा होगा, आपके जो बीजों का जर्मिनेशन है, जो उगने वाली जो क्षमताएं है वो ज्यादा होगी। बाकी कई बार जो है रासायनिक में दिक्कतें पैदा हो जाती है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, जैसा कि आपने हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, यही समुदाय की इन सारी चीजों में क्या भूमिका है?
1: देखिए, समुदाय जो है वो निर्णय ले सकता है अपने क्षेत्र में कि आपको किस तरह के खाद बीजों का उपयोग करना है। तो आप लोग अधिक से अधिक पशु रखें, पशुओं का खाद जो निकलता है गोबर वो आप खेती में डालें, तो ये हमारे समुदाय की जिम्मेदारी है, हमारे परिवारों की जिम्मेदारी है। मिट्टी के जो परीक्षण है उसके प्रति जागरूकता फैलाना, दूसरा मिट्टी का पोषक तत्व है वो क्यों आवश्यक है उसके प्रति आप संवाद करें समुदाय में, आपके गांव में। दूसरा, जैसे हम मिट्टी दिवस मनाते हैं, बीज उत्सव मनाते हैं, इनमें अधिक से अधिक लोग जाकर वहां पे जो सारी चीजों को समझना चाहिए और उनपे एक विस्तार से संवाद करें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए
0: जी। हाँ,
1: तो ये जरूरी है। स्थानीय ज्ञान है जो हमारा परंपरागत है, जो हमारे बुजुर्ग है उनके साथ हमें बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से है मिट्टी की पोषकता को बढ़ाया जा सकता है और वो क्या उपयोग करते थे। दूसरा है कि रासायनिकों का जो उपयोग है वो अंधाधुंध उपयोग हो रहा, भी आप देख रहे होंगे लंबी लाइनें लग जाती है, लेकिन ऐसा जो स्थितियां नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना खुद का जो खाद है वो रखें, आप चाहे वो बर्मी बेड से आप बर्मी कंपोस्ट बनाएं, चाहे वो केड़ा हो, चाहे आपका गोबर खाद हो।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह की जो है प्रैक्टिस, जो अभ्यास है उनको हमें पुनः जो अपनाना पड़ेगा, ताकि हमारी मिट्टी भी खराब नहीं हो, हमारी जो उत्पादन है वो भी अच्छा हो और जो उत्पादित होता है अनाज उसकी गुणवत्ता भी काफी बेहतर रहती है।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह मनुष्य का स्वास्थ्य जरूरी होता है उसी तरह मिट्टी का भी स्वास्थ्य जरूरी होता है। हमारी मिट्टी हमारी माँ जैसी होती है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। अधिक से अधिक जो देसी खाद बीज का उपयोग करें, और अच्छा उत्पादन के साथ अच्छी पोषक जो फल सब्जियां हैं और अनाज है वो आप अपनी थाली में उपयोग करें।
0: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: जिम की भाई बोनो हमने अपने व्यास में मांगीलाल जी जुड़े तक कहा ने एने अपना ने घनी असल तरीका तक बताड़ू है कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन तक स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ फसल ने स्वस्थ परिवार ने नींव अपने बनावी शक। एने अपना ने बताड़ू है कि आना उर्वरक नु प्रबंधन अपना ने हाथ करव है किसान भाई बोन हूँ करी सके ने एने साथे समुदाय नी आनमी हूँ भूमिका है। तो आशा कर रहा भाई बोनो कि आ हंगरी बात आपने गमी होंगा क्योंकि हवे टाइम थी गयो है अपने अणस कार्यक्रम तक सूट पड़वा। तो सूट तो पड़ पण साथे पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
0: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
0: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
0: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉग रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं किशोरियों का पोषण, स्वस्थ बेटी सशक्त भविष्य को लेकर। जी हाँ, पोषण की बात केवल छोटे बच्चों तक सीमित नहीं है। किशोरावस्था जीवन का वह पड़ाव है जब शरीर में तेजी से बदलाव होता है और भविष्य के स्वस्थ जीवन की नींव तैयार होती है। इस उम्र में शरीर को बढ़ने, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास, पढ़ाई, खेलकूद और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए पर्याप्त पोषक तत्व की जरूरत होती है। खासकर किशोरावस्था के लिए पोषण का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मासिक धर्म की शुरुआत में शरीर में आयरन की कमी भी हो जाती है। खान पान में लापरवाही, भोजन छोड़ना, बिना सलाह की डाइटिंग करना या पौष्टिक भोजन की कमी आगे चलकर कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं किशोरियों का पोषण, स्वस्थ बेटी, सशक्त भविष्य को लेकर। तो श्रोता साथियों, आज हमारी बातचीत रहने वाली है किशोरियों के सही पोषण, आयरन, फोलिक एसिड, मासिक धर्म के दौरान खान पान, खेल, व्यायाम, परिवार और स्कूल की भूमिका क्या है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं किशोरी का पोषण केवल आज की सेहत नहीं बल्कि आने वाले स्वस्थ जीवन की तैयारी भी है। फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार अंजलि।
0: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अंजलि।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है किशोरावस्था में पोषण क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरीके से किशोरी जो बालिकाएं हैं उन्हें खाने पीने की चीजों को लेकर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहीं आप सबसे पहले हम यही बताइए कि किशोरावस्था में पोषण सबसे महत्वपूर्ण आखिरकार क्यों है।
1: हाँ अंजलि, किशोरावस्था आयु वर्ग का ऐसा दौर है जिसमें पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो इसमें अगर अपन देखें तो इस महत्वपूर्ण चरण में शरीर और मस्तिष्क दोनों का तेजी से विकास होता है।
0: बिल्कुल।
1: लंबाई और वजन भी बढ़ता है, साथ साथ हड्डियां, मांसपेशियां और प्रजनन अंगों का भी विकास होता है। और इसमें किशोरियों की अगर बात करें तो उनका मासिक धर्म भी शुरू होने लगता है और इस वजह से अगर ध्यान ना दिया जाए तो आयरन की कमी भी होने लगती है क्योंकि आयरन की आवश्यकता शरीर के लिए बढ़ जाती है। इसलिए इस उम्र में पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: अगर इस समय पोषण की कमी रह जाए तो एनीमिया, कमजोरी, थकान, बार बार बीमार पड़ना, पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ता है और वहीं सही पोषण किशोरी को स्वस्थ रहने, आत्मविश्वास बढ़ाने और आगे चलकर स्वस्थ मातृत्व के लिए भी तैयार होने में मदद करता है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि किशोरावस्था में पोषण क्यों महत्वपूर्ण है और यही आपने बताया था कि किस तरीके से अगर पोषण की कमी होती है तो महिलाओं में एनीमिया की समस्या हो जाती है। तो किशोरावस्था में एनीमिया इतना आम क्यों है?
1: किशोरियों में एनीमिया का मतलब अगर हम समझे तो खून की कमी के कई कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि किशोरावस्था में शरीर का तेजी से विकास होता है, इसलिए इस उम्र में आयरन की जरूरत बढ़ जाती है और वहीं किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत होती है जिसे वो समझ भी नहीं पाती है ठीक से और हर महीने रक्तस्राव के कारण शरीर से आयरन की कुछ मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में अगर भोजन में आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की कमी रहेगी और भोजन की विविधता में कमी होगी तो एनीमिया दिन ब दिन कम होता ही चला जाएगा और उसकी वजह से फिर शरीर में कई तरह की चीजों को किशोरियों को सामना करते रहना पड़ेगा।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बता रही हैं कि किस तरीके से किशोरावस्था में एनीमिया जो है वो बहुत ही आम है, यही आयरन और फोलिक एसिड की गोली क्यों दी जाती है?
1: आयरन और फोलिक एसिड की गोली किशोरियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है।
0: बिल्कुल।
1: किशोरावस्था में शरीर तेजी से क्योंकि विकास कर रहा होता है और मासिक धर्म का भी कारण जैसे कि अपन ने बात की जिसकी वजह से आयरन की जरूरत बढ़ जाती है तो इसकी कमी से एनीमिया, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, एकाग्रता में भी कमी होने लगती है। और दूसरी ओर अगर अपन फॉलिक एसिड की बात करें तो जो फॉलिक एसिड है वो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण और शरीर की वृद्धि में सहायक होता है।
0: बिल्कुल।
1: और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आयरन और फॉलिक एसिड हमेशा साथ में दिए जाते हैं ताकि एनीमिया की रोकथाम और किशोरियों की बेहतर विकास में मदद मिल सके। अगर मैं सरल शब्दों में बात करूँ ना अंजलि, तो ये है कि आयरन शरीर में खून बनाने में मदद करता है।
0: बिल्कुल।
1: और फॉलिक एसिड जो है वो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग करता है, इसलिए किशोरियों को आईएसए की गोली नियमित रूप से लेना महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था में हर जो लड़की होती है वो हर महीने मासिक धर्म से गुजरती है, तो मासिक धर्म के दौरान खान पान की चीजों का हमें कैसे ध्यान रखने की जरूरत है?
1: हाँ, ये अगर हम खान पान से जोड़ के देखें तो खान पान अगर हमारा अच्छा हो, पौष्टिक हो, पौष्टिक आहार अगर हम ले रहे हैं किशोरावस्था में, तो ये एनीमिया और आयरन की कमी से हमें बचा सकता है। जैसे कि भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चने, राजमा, बाजरा और मोटे अनाज, और उसके साथ साथ में तिल, मूंगफली, गुड़, अंडे भी मांसाहारी पदार्थ लेने वाले ले सकते हैं। और साथ में आयरन वाला भोजन अगर हम देखें तो उसके साथ में नींबू, आंवला, अमरूद और अन्य जो विटामिन सी युक्त फल सब्जियां होती है वो लेने से शरीर को आयरन अवशोषित करने में मदद मिलती है। तो स्थानीय स्तर पे जो भी हमको विटामिन सी से मिलने वाली जो चीजें हैं वो हम भरपूर तरीके से अपने खाने में, खान पान में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान हमें पानी खूब पीना चाहिए। पर्याप्त पानी अगर हमको नहीं मिलता है ना, तो हम कितना भी संतुलित भोजन कर लें कोई फायदा नहीं है उससे। तो केवल मासिक धर्म के कारण भोजन कम करना या किसी पौष्टिक भोजन को अनावश्यक रूप से छोड़ना सही नहीं है। और चाय कॉफी को भोजन के तुरंत बाद लेने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इससे आयरन के अवशोषण पर गलत असर पड़ता है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो क्या किशोरावस्था में डाइटिंग करना सही है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी जो लड़कियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि मेरा वजन ज्यादा ना बढ़ जाए, मेरे जो शरीर का आकार है वो इधर उधर गड़बड़ा न जाए, उसके चक्कर में वो डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं। तो क्या डाइटिंग करना सही है?
1: किशोरावस्था में बिना विशेषज्ञ की सलाह के डाइटिंग करना सही नहीं माना जाता। देखो, इस उम्र में क्या होता है, अपन ने बात की कि शरीर और मस्तिष्क जो है हमारा तेजी से विकास कर रहा होता है, तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
0: जी।
1: अब वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? भोजन छोड़ना पड़ता है, बहुत कम खाना खाया जाता है, या कोई एक खाद्य समूह ऐसा भी होता है जिसको वो बंद कर देते हैं, भोजन में शामिल करते ही नहीं है। तो पोषण की कमी, कमजोरी और एनीमिया ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से शरीर के विकास पर एक विपरीत प्रभाव देखा जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर किसी किशोरी को वजन अधिक या कम है और उसे खुद अगर वो चाहती है कि डाइटिंग करे, तो वो खुद से शुरू नहीं करे, इसकी बजाय वो डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी सलाह ले, और उनकी सलाह के अनुसार ही वो लक्ष्य भोजन कम करना उसके लिए ठीक रहेगा, और नियमित शारीरिक गतिविधि और अपनी दिनचर्या का हिस्सा उन चीजों को बनाना होगा।
0: बिल्कुल मैम। तो यही मैम अब मैं जानना चाहूंगी कि किशोरियों को एक दिन में क्या क्या खाना चाहिए।
1: देखो अंजलि, अगर अपन अपने आदिवासी क्षेत्र की बात करें ना किशोरियों के लिए, तो सोचने की बात और समझने की चीज सिर्फ इतनी सी है कि जो पौष्टिक भोजन होता है ना वो महंगा नहीं होता है, महंगा होना जरूरी भी नहीं होता है। ये सब हमारे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मक्का होता है, ज्वार है, आले, चना, मूंगफली, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, कंद, मूल, ये इस तरह के पदार्थ हैं कि हमारे जो किसान भाई बहने हैं इनके घरों में, खेतों में ये आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें हैं। इसी तरह से हमारे सभी किसान भाई बहनों के यहाँ पे पशुधन बहुत अच्छे से मिलता है, कोई परिवार ऐसा नहीं है जहाँ पे पशुधन नहीं मिलेगा। क्योंकि पशुधन की उपलब्धता होती है तो वो दूध, दही, छाछ और अंडा भी लिया जा सकता है, है ना। सबसे जरूरी है कि किशोरी दिन में पर्याप्त और विविध प्रकार का भोजन करे।
0: बिल्कुल।
1: और इससे भी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण अगर हम समझे तो ये है कि सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और परिवार में उसे पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन मिलना भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें बता रही है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि किशोरावस्था में खेल और व्यायाम का क्या महत्व है?
1: खेल और व्यायाम को बहुत बार हम अलग रखते हैं, बच्चों को घर के कामों में उलझाए रखते हैं, तो हमें इसका भी महत्व समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए ना। तो क्योंकि किशोरियों का व्यायाम और खेल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को तो मजबूत करता ही है, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: इससे शरीर तो मजबूत रहता है, हड्डियां और मांसपेशियों का भी अच्छा विकास होता है और तनाव कम होता है। इसलिए किशोरियों को रोज कुछ समय खेलना, दौड़ना, चलना या अपने पसंद की शारीरिक गतिविधि के लिए समय जरूर देना चाहिए। और मासिक धर्म के दौरान भी यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो हल्की सामान्य गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं।
0: बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आप बहुत अच्छी बातें हमें बता रही हैं, यहीं अब मैं जानना चाहूंगी कि किशोरावस्था में पोषण को लेकर आज जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें माता पिता की क्या भूमिका है और स्कूल की क्या भूमिका है।
1: तो माता पिता और स्कूल की जैसे आप बात कर रहे हो अंजलि, इनकी सबकी भूमिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? जैसे माता और पिता जो होते हैं वो एक आधार होता है बच्ची के जीवन का। तो माता पिता को किशोरी के भोजन, स्वास्थ्य और भावनात्मक जरूरतों का ध्यान देना चाहिए। उसे पर्याप्त और पौष्टिक भोजन दें, खासकर आयरन और प्रोटीन वाले स्थानीय खाद्य पदार्थ से भरपूर उसकी भोजन की थाली होनी चाहिए। वो उस वक्त अगर किसी भावनात्मक दौर से गुजर रही है तो उसकी बातों को सुने, अनसुना नहीं करना है, और उसकी बातों को समझ के और उसके साथ में क्या समाधान निकाले जा सकते हैं उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा मासिक धर्म और शरीर में होने वाले बदलाव पर खुलकर बातचीत करें। बच्ची को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई बीमारी है। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, ये किसी भी स्वस्थ शरीर की एक आवश्यक चीज है जो हर स्वस्थ बालिका के जीवन के हिस्से के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है। तो खेल और शारीरिक गतिविधि के लिए पर्याप्त समय और अवसर भी उपलब्ध करवाना माता पिता की जिम्मेदारी में आता है।
0: बिल्कुल।
1: जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य जांच, आयरन फॉलिक एसिड की गोली नियमित लेने के लिए सहयोग करना, ये सब चीजें माता पिता को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरह अगर अपन स्कूल की भूमिका की बात करें तो स्कूल किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी और व्यवहार विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। तो स्कूलों में संतुलित भोजन, एनीमिया, मासिक धर्म, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर नियमित चर्चाएं होनी चाहिए। आयरन फॉलिक एसिड की गोली, स्वास्थ्य जांच, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय और खेलकूद की उचित व्यवस्था भी जरूरी है। तो स्कूल की भूमिका बनती है कि शिक्षकों के साथ मिलकर किशोरियों की समस्याओं को समझने और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में उनका सहयोग करें।
0: बिल्कुल। और अगर मैडम किसी किशोरी का विवाह समय से पहले हो जाए और कम उम्र में गर्भधारण हो तो पोषण पर कुछ असर पड़ सकता है?
1: बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में शादी और गर्भ धारण कर लेने से किशोरी के शरीर पर अतिरिक्त पोषण और स्वास्थ्य संबंधी दबाव आ जाता है। एक तो उसे खुद के लिए पोषण तो लेना ही लेना होता है, अब गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी उसको तो पोषण की जरूरत होगी। तो उस समय क्या होता है कि बालिका का जो शरीर है वो भी विकास कर रहा होता है और इससे आयरन, फॉलिक एसिड और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है और एनीमिया तथा पोषण की कमी का जोखिम बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए किशोरी को पहले अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पर्याप्त पोषण और समय मिलना जरूरी है।

0: तो जैसा कि मैम कार्यक्रम में हमने किशोरावस्था में पोषण से महत्वपूर्ण जुड़ी जो बातें थी उनके बारे में ढेर सारी बातों को जाना, तो अंत में आपकी महत्वपूर्ण सलाह हमारे श्रोता साथियों को क्या रहेगी जिससे किशोरियों के पोषण का ध्यान रखा जा सके?
1: मैं अपने श्रोता साथियों को ये कहना चाहूंगी कि किशोरी के पोषण को परिवार की प्राथमिकता बनाए, उसको पर्याप्त अलग अलग तरह के विविध तरह के भोजन दें, आयरन फॉलिक एसिड की गोली नियमित लेने के लिए उसकी मदद करें, खेलकूद और शारीरिक गतिविधि के लिए उसको समय दें, स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या पर समय पर सलाह लेने के लिए पहुंचें, और सबसे जरूरी है कि किशोरी की बात सुने। किशोरावस्था में बच्चियों के मन में बहुत बातें होती है अंजलि, लेकिन उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो ना तो उनकी कोई उनकी हम उम्र साथियों के साथ मिलने बैठने बातें करने के उनके पास मौके होते हैं, और ना ही घर परिवार और स्कूल में कहीं ऐसे मौके उनको मिलते हैं। तो उनके स्वास्थ्य और पोषण को उतना ही महत्व दिया जाए जितना परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए दिया जाता है।
0: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: थैंक यू सो मच अंजलि, मुझे वागड़ रेडियो के साथ जुड़कर हमेशा खुशी होती है।
0: श्रोता साथियों, आज की बातचीत से एक बात साफ है कि किशोरी का पोषण किसी एक दिन या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, परिवार, स्कूल, समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं सभी का सहयोग मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना सकता है जिसमें हमारी बेटियां बिना झिझक अपनी जरूरतों के बारे में बात कर सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, क्योंकि बेटियों को भोजन में भेदभाव नहीं, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन चाहिए। उन्हें अपनी पसंद नापसंद के साथ साथ शरीर की जरूरत को समझना भी जरूरी है। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और इस दौरान स्वच्छता के साथ पर्याप्त भोजन, पानी और आराम का ध्यान रखना चाहिए। आयरन, फोलिक एसिड जैसी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी विशेषज्ञों या स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। तो श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है इसी कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है कि हमारी डिजिटल संगत कैसी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश कि हम अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, परिवार वालों के साथ रहते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं और काम करते हैं, लेकिन आज हमारी एक ऐसी संगत भी बन गई है जिसके बारे में शायद हम रोज सोचते ही नहीं, और वो है हमारी डिजिटल संगत। साथियों, हमारा मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन गेम्स, चैटिंग, शॉर्ट वीडियो और इंटरनेट पर मिलने वाली अलग अलग तरह की सामग्री, ये सारी चीजें मिलकर हमारी डिजिटल दुनिया बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जरा खुद से पूछिए श्रोताओं कि जब आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो आपके पास कैसी बातें होती हैं, क्या आप क्या देखते हैं, किसे सुनते हैं, किस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं, और सबसे जरूरी बात कि इन सब का असर आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीकों पर कैसे पड़ रहा है।
0: बिल्कुल जागृति जी,
1: क्योंकि जैसे हमारे आसपास रहने वाले लोगों की संगत हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है कशिश, वैसे ही हमारी डिजिटल संगत भी हमारी सोच, आदत और नजरियों को प्रभावित कर सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे दोस्तों को हम प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमारी डिजिटल संगत कैसी है। दोस्तों, अगर बात करें कि डिजिटल संगत होती क्या है, तो संगत का मतलब केवल हमारे साथ बैठने वाले दोस्त या हमारे आसपास रहने वाले लोग नहीं होते। जागृति जी, आज के डिजिटल समय में संगत का एक बड़ा हिस्सा हमारी स्क्रीन के अंदर भी मौजूद है।
1: बिल्कुल,
0: हम श्रोता साथियों सोशल मीडिया पर जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिनकी वीडियो देखते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं और जिन पोस्ट पर बार बार रुकते हैं, जिन विचारों को लाइक और शेयर करते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में हमारे डिजिटल संगत का हिस्सा बन जाते हैं। मान लीजिए कि कोई युवा रोज ऐसे वीडियो देखता है जिनमें पढ़ाई, करियर, कौशल, किताबें, विज्ञान, खेल, कला या प्रेरणादायक बातें होती हैं।
1: जी हाँ,
0: तो धीरे धीरे उसका ध्यान भी इन चीजों की तरफ बढ़ने लगेगा। जागृति जी, वहीं अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मकता, अफवाह, अपमानजनक सामग्री, बेकार की बहस या घंटों तक बिना उद्देश्य की वीडियो देखने में समय बिताता है, तो उसकी डिजिटल आदतें उसके समय और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए श्रोता साथियों, सवाल ये नहीं है कि हम डिजिटल दुनिया में हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम डिजिटल दुनिया में किस तरह की संगत को चुन रहे हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा अवस्था जीवन का वो समय है जब व्यक्ति अपनी पहचान, विचार और भविष्य को आकार देता है। इस उम्र में हम बहुत कुछ सीखते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं और अपने सपनों को लेकर सोचते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इंटरनेट इस सीखने की प्रक्रिया में बहुत मददगार हो सकता है। आज हम देखते हैं कि कोई युवा अपने छोटे से गांव या कस्बे में बैठकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में जान सकता है। वो नई भाषा को सीख सकता है, किसी विषय की जानकारी ले सकता है, कोई हुनर सीख सकता है और अपने करियर के लिए नए रास्ते को भी समझ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन साथ ही इंटरनेट पर उपलब्ध हर चीज हमारे लिए उपयोगी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें अपनी डिजिटल संगत को लेकर उतना ही सजग रहना होगा जितना हम वास्तविक जीवन में दोस्तों का चुनाव करते समय रहते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथी दोस्तों, अगर हमारी डिजिटल दुनिया में ऐसे लोग हैं और सामग्रियां हैं जो हमें सीखने, मेहनत करने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है, तो इंटरनेट हमारे लिए एक शानदार अवसर बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी, आज के युवा ऑनलाइन नई स्किल सीख सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, भाषाएं सीख सकते हैं, किताबों और ज्ञानवर्धक सामग्री तक पहुंच बना सकते हैं। साथ ही साथ खेती और रोजगार की नई तकनीकें भी वे जान सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से ही। छोटे व्यवसाय शुरू करने के तरीके सीख सकते हैं, कला, संगीत या रचनात्मकता को आगे बढ़ा सकते हैं। देश दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी श्रोता साथियों हम इंटरनेट के माध्यम से ही ले सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि सही डिजिटल संगत हमें उपभोक्ता से निर्माता भी बना सकती है। सिर्फ दूसरों का कंटेंट देखने के बजाय अगर हम कुछ सीखें, बनाएं और साझा करें, तो डिजिटल दुनिया हमारे विकास का एक माध्यम बन सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली वो हर चीज वास्तविक नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन का सिर्फ वही हिस्सा दिखाते हैं जो अच्छा लगता है। जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को यही बात करते हैं, हमें उनकी सफलता दिखाई देती है लेकिन उनके संघर्ष नहीं दिखाई देते, हमें उनकी उपलब्धियां दिखाई देती है लेकिन उनके पीछे एक मेहनत नहीं दिखाई देती है। ऐसे में युवा अनजाने में अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की सोशल मीडिया वाली तस्वीर से करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए श्रोताओ, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती। किसी को एक फोटो, एक वीडियो या कुछ सेकंड की रील उसके पूरे जीवन की कहानी नहीं बता सकती है।
0: जी जी,
1: इसलिए डिजिटल दुनिया को देख कर अपने जीवन की कीमत तय करना सही नहीं है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
2: लंबा सफर है हमको क्या डर है, हंसते हंसते कट जाएगा।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि हमारी डिजिटल संगत कैसी होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना था कि आखिर डिजिटल संगत है क्या, ये भी जाना था कि डिजिटल संगत हमारी सोच को किस तरह से प्रभावित कर रही है,
1: बिल्कुल
0: अच्छी डिजिटल संगत हमें आगे किस तरह से बढ़ा सकती है। साथ ही हम जानते हैं कि हर चमकती चीज सच नहीं होती।
1: बिल्कुल जागृति जी, यानी कि युवा साथियों, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर चीज वास्तविक नहीं होती। कई बार लोग अपने जीवन का सिर्फ वही हिस्सा दिखाते हैं जो अच्छा लगता है। हमें उनकी सफलता दिखाई देती है लेकिन उनके संघर्ष नहीं। हमें उनकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं लेकिन उनके पीछे की मेहनत नहीं देखते हम, जागृति
0: जी। हाँ।
1: ऐसे में हमारे युवा अनजाने में अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की सोशल मीडिया वाली तस्वीर से करने लगते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, याद रखिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती। किसी की एक फोटो, एक वीडियो या कुछ सेकेंड

0: की रील उनके पूरे जीवन की कहानी नहीं बता सकती, इसलिए डिजिटल दुनिया को देखकर अपने जीवन की कीमत तय करना सही नहीं है।
1: जी हाँ कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, क्या आपने कभी मोबाइल सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाया और देखते देखते आधा घंटा 1 घंटा निकल गया? ऐसे बहुत लोगों के साथ हमेशा होता है।
0: बिल्कुल,
1: एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा समय कहाँ चला गया। युवाओं को कहना चाहेंगे कि जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई, काम, परिवार, दोस्ती, आराम, खेल और अपने लक्ष्य, हर चीज के लिए समय होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अगर हमारा बहुत सारा समय बिना उद्देश्य के स्क्रीन पर चला जाता है तो हमारे पास उन चीजों के लिए कम समय बचता है जो वास्तव में हमारे भविष्य के लिए जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए खुद से पूछिए श्रोताओं कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ या मोबाइल मुझे चला रहा है। ये छोटा सा सवाल हमारी डिजिटल आदतों को समझने में बहुत मदद कर सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथी युवा साथियों, आपके फीड आपके विचारों की खिड़की है। जैसे कि सोशल मीडिया पर हमें बार बार उसी तरह की सामग्री दिखाई देने लगती है जिस पर हम रुकते हैं, देखते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं। जागृति
1: जी हाँ,
0: इसलिए साथियों कभी अपनी सोशल मीडिया फीड को ध्यान से देखिए, क्या उसमें ज्ञान है, क्या उसमें रचनात्मकता है, क्या उसमें प्रेरणा है साथियों, क्या उसमें सीखने वाली कुछ बातें हैं या सिर्फ ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर आपका समय बीत जाता है। अगर आपको लगे कि आपकी फीड बहुत ज्यादा नकारात्मक या अनुपयोगी सामग्री की है तो अपने डिजिटल संगत को बदलना आज से ही आप शुरू कर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: कुछ ऐसे अकाउंट और चैनल को चुनिए जिनसे आपको वास्तव में कुछ सीखने को मिले।
1: जी हाँ कशिश, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम वास्तविक जीवन में हर व्यक्ति से दोस्ती नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार हमें परेशान करता है या गलत दिशा में ले जाता है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: डिजिटल दुनिया में यही सोच लागू होती है। अगर कोई अकाउंट हमें बार बार परेशान करता है, गलत जानकारी फैलाता है या हमें नकारात्मक महसूस कराता है तो जरूरी नहीं श्रोताओं कि हम उसे फॉलो करते रहें। हम उसे अनफॉलो, म्यूट या ब्लॉक जैसे विकल्पों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये किसी के खिलाफ होना नहीं है, ये हमारे डिजिटल वातावरण को स्वच्छ रखने का एक तरीका है।
0: बिल्कुल, जैसे कि दोस्तों आज हम देखते हैं कि कोई वीडियो वायरल है तो कोई मीम ट्रेंड कर रही है, कोई चैलेंज लोकप्रिय है या कोई बात हर जगह दिखाई दे रही है। जागृति जी, लेकिन सिर्फ इसलिए दोस्तों कि कोई चीज लोकप्रिय है इसका मतलब ये नहीं है कि सही, उपयोगी या आपके लिए जरूरी भी है। युवाओं को किसी भी वायरल सामग्री को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा रुककर सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कि क्या ये सच है, क्या ये उनके लिए उपयोगी है, क्या इसे शेयर करना उनके लिए उचित होगा या क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। दोस्तों डिजिटल जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ खुद ही सही सामग्री देखना नहीं होता बल्कि गलत या भ्रामक सामग्री को आगे फैलाने से बचना भी है।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि संगत का मतलब केवल लोगों से है, लेकिन डिजिटल दुनिया में हमारी संगत कुछ आदतों से भी बनती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि रात को देर रात तक फोन चलाना, हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन चेक करना, बिना जरूरत के फोन उठाना, खाली समय मिलते ही रील्स देखना, हर चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करना और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, अगर ये आदतें हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने लगे तो हमें रुक कर सोचना होगा। हम देखते हैं कि मोबाइल जरूरी है, इंटरनेट जरूरी है और सोशल मीडिया भी आज के समय का हिस्सा बन गया है कशिश।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हमारी पूरी जिंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें अपने परिवार वालों से बात करनी होगी, दोस्तों के साथ बैठना होगा, बाहर खेलना होगा, किताबें पढ़नी होगी, प्रकृति के साथ समय बिताना होगा, अपने शौकों को पूरा करना होगा और अपने आसपास के लोगों की मदद करना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: कभी कभी फोन को एक तरफ रख कर अपने आसपास की दुनिया को देखिए श्रोताओं, हो सकता है कि जिस खुशी को हम स्क्रीन पर ढूंढ रहे हैं वो हमारे बिल्कुल पास बैठी हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि अच्छे डिजिटल संगत का मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो ही देखने हैं साथियों।
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल दुनिया में मनोरंजन भी जरूरी है, संगीत, फिल्में, खेल, कॉमेडी और रचनात्मक सामग्री भी जीवन का एक हिस्सा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम संतुलन रखें। आप श्रोता साथियों अपने लिए एक छोटा सा डिजिटल नियम बना सकते हैं, जैसे कि जो मुझे सिखाए मैं उसे जगह दूंगा।
1: जी हाँ,
0: जो मुझे प्रेरित करे मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, जो मुझे बेवजह परेशान करे मैं उससे दूरी बनाऊंगी, जो गलत जानकारी दे उसे बिना जांचे शेयर नहीं करूंगा, और सबसे जरूरी है कि मोबाइल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, पूरी जिंदगी नहीं।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के बाद आपको एक छोटा सा काम जरूर करना है और वो ये है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खोलेंगे, देखेंगे कि आप किन लोगों को और किन पेज को फॉलो करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: फिर खुद से आप ये पूछिए कि क्या ये मेरी सोच को बेहतर बना रहा है, क्या मैं इनसे कुछ सीख पा रहा हूँ, क्या इनकी वजह से मेरा समय बेहतर इस्तेमाल हो रहा है? श्रोता साथियों, जो चीजें आपको सीखने, सोचने और आगे बढ़ने के लिए मदद करती है, उन्हें अपने डिजिटल दुनिया में आप जगह दीजिए।
1: जी हाँ।
0: और जो चीजें सिर्फ आपका समय ले रही है, उनसे थोड़ा अंतर बनाइए। क्योंकि जागृति जी, हमारी डिजिटल फीड सिर्फ हमारी स्क्रीन नहीं बनाती, वह धीरे धीरे हमारे विचारों का वातावरण भी बनाती है।
1: बिल्कुल कशिश, और हमारे श्रोता साथियों के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज डिजिटल दुनिया हमारे जीवन से अलग नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट ने हमारे सामने सीखने और आगे बढ़ने के अनगिनत अवसर खोल दिए हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हर अवसर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जिस तरह हम कहते हैं कि जैसी संगति वैसी रंगत, उसी तरह आज के समय में ये बात हमारी डिजिटल जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हमारी डिजिटल संगत ज्ञान, रचनात्मकता, मेहनत, सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों से भरी है, तो वो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे हर चीज को अपनी डिजिटल दुनिया का हिस्सा बना लेंगे, तो हमारा समय, ध्यान और सोच प्रभावित हो सकती है।
0: हाँ।
1: इसलिए आज से अपने मोबाइल की स्क्रीन को सिर्फ मनोरंजन का साधन मत समझिए, उसे सीखने, जुड़ने, आगे बढ़ने और अपनी आवाज को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम बनाइए।
0: बिल्कुल।
1: और हाँ, कभी कभी मोबाइल को नीचे रखकर अपने आसपास की दुनिया को भी जरूर देखिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, जिंदगी हमारे आसपास भी है।
0: बिल्कुल।
1: संगत वही चुनिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाए, चाहे वो संगत आपके पास बैठी हो या आपकी मोबाइल स्क्रीन के उस पार। और याद रखिए श्रोताओं, डिजिटल दुनिया बड़ी है, लेकिन आपकी सोच उससे भी बड़ी है।
0: जी हाँ।
1: फैसला कीजिए श्रोता साथियों की स्क्रीन हमें चलाएगी या हमारी समझ स्क्रीन को।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी रही और हम जान पाए कि हमारी डिजिटल संगत किस प्रकार से रहनी चाहिए और किस प्रकार से हमें अपनी मोबाइल को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल।
0: तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे जागृति जी, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है जल और प्रकृति की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा को लेकर। जैसा कि अंजलि हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं जरा सोचिए कि सुबह जब हम उठे और नल खुले लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी न आए, खेतों में सिंचाई के लिए पानी न हो, पशुओं के लिए पानी न मिले और पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगे, तब हमें समझ आएगा कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे, जल और प्रकृति की रक्षा को लेकर बातें करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है जल और प्रकृति की रक्षा को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो कहना चाहेंगे श्रोताओं कि पानी केवल हमारी प्यास बुझाने का साधन नहीं है, पानी खेतों की हरियाली है, पशु पक्षियों का जीवन है, जंगलों की सांस है और हमारे पूरे पर्यावरण का आधार है। जिस तरह शरीर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह पानी और प्रकृति के बिना धरती पर जीवन संभव भी नहीं है। हम देखते हैं अंजलि कि आज विकास के नाम पर हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है। जंगल कम हुए, जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा, भूजल का स्तर गिरा और नदियों तथा तालाबों में प्रदूषण बढ़ा। इसका असर केवल आज पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए जल और प्रकृति की रक्षा केवल पर्यावरण बचाने का काम नहीं बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जल है तो जीवन है।
0: बिल्कुल।
1: हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर हर छोटे बड़े काम में पानी की आवश्यकता होती है। पीने, खाना बनाने, खेती, पशुपालन, स्वच्छता और उद्योग, हर क्षेत्र में पानी पर निर्भरता है। श्रोता साथियों, ग्रामीण जीवन में तो पानी का महत्व और भी अधिक है। किसान के लिए पानी फसल की उम्मीद है, पशुपालक के लिए पानी पशुओं का जीवन है। गांव के तालाब, कुएं, बावड़ियां और नदियां केवल जल स्रोत नहीं है बल्कि गांव की जीवन रेखा भी है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, जब पानी को आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल किया जाता है और वर्षा के पानी को जमीन में जाने का अवसर नहीं देते हैं तो धीरे धीरे जल संकट बढ़ता है। इसलिए आज जरूरत है जागृति जी कि पानी को केवल उपयोग करने की चीज न समझें बल्कि उसे बचाने की जिम्मेदारी भी समझी जाए।
0: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश में वर्षा के रूप में हर साल बड़ी मात्रा में पानी आता है, लेकिन अगर बारिश का पानी बहकर निकल जाए और उसे संग्रहित न किया जाए तो वर्षा के बाद भी पानी की कमी बनी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: घर की छत से आने वाले पानी को टंकी या रिचार्ज पेट में पहुँचाया जा सकता है। गाँव में तालाबों, नालियों और छोटे जल स्रोतों को गहरा और साफ रखा जा सकता है। खेतों में मेड़बंदी और जल संरक्षण के अन्य स्थानीय उपाय भी किए जा सकते हैं। बारिश की एक एक बूंद को रोकना भविष्य के लिए पानी जमा करना जैसा है।
1: बिल्कुल।
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे श्रोताओं कि आज कई स्थानों पर खेती, घरेलू उपयोग और अन्य जरूरतों के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ी है। लगातार पानी निकालते रहने और कम पानी जमीन में पहुँचने से भूजल स्तर प्रभावित हो सकता है। इसका समाधान अंजलि केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि गांव का प्रत्येक परिवार इसमें योगदान दे सकता है। नल खुला छोड़ने से बचना चाहिए, पाइपलाइन में रिसाव ठीक करना होगा, जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग करना होगा, वर्षा जल को जमीन में पहुंचाना होगा। ये जो छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे सामने पेड़ पौधे आते हैं, लेकिन प्रकृति का संसार इससे कहीं बड़ा है। जंगल, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, हवा, जल, पशु पक्षी, छोटे जीव सभी प्रकृति का हिस्सा हैं। श्रोता साथियों, प्रकृति का हर घटक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पेड़ मिट्टी को संभालते हैं, वर्षा के चक्र में योगदान देते हैं और अनेक जीवों को आश्रय देते हैं। जल स्रोत मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए प्रकृति की रक्षा का अर्थ उसे पूरे संतुलन की रक्षा करना नहीं है, पेड़ लगाना ही नहीं, पेड़ बचाना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, अक्सर हम वृक्षारोपण के समय पौधे लगाते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन पौधा लगाना शुरुआत है, जिम्मेदारी का अंत नहीं है। एक पौधे को बड़ा होने के लिए पानी, मिट्टी, सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए जागृति जी, जितने पौधे लगाएं उतने ही पौधों की देखभाल का संकल्प भी लें।
0: बिल्कुल।
1: स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पेड़ पौधों का चयन करना और उन्हें नियमित रूप से पानी देना प्रकृति संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जल संरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं कि जल और प्रकृति की रक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं, ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि जल का संरक्षण हम कैसे करें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। यही बात करें पानी बचाने वाली खेती की, तो श्रोता साथियों, हमारे गांव की अर्थव्यवस्था में खेती की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जल संरक्षण का संबंध खेती से भी सीधे जुड़ा हुआ है। किसान सिंचाई के पानी का उपयोग आवश्यकता और फसल की स्थिति के अनुसार कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: खेत में पानी को रोकने के लिए मेड़बंदी, वर्षा जल संचयन और मिट्टी में नमी बनाए रखने के स्थायी उपाय उपयोगी हो सकते हैं। कम पानी में अच्छी तरह होने वाली फसलों और स्थानीय अनुभवों पर भी ध्यान दिया जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि जब किसान पानी बचाता है तो वो केवल अपनी फसल नहीं बचाता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्रोत भी बचाने में योगदान देता है। हमारे गांवों में पहले तालाब, कुएं, बावड़ियां और अन्य पारंपरिक जल स्रोत जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, इन जल स्रोतों की सफाई देखभाल सामूहिक रूप से किया करते थे हम सभी। आज जरूरत है कि हम अपनी स्थानीय जल परंपराओं से सीखें, पुराने जल स्रोतों की स्थिति देखें, उनमें कचरा न डालें और जहां संभव हो सामुदायिक प्रयासों से उनके साफ सफाई और संरक्षण करें।
1: बिल्कुल,
0: हमारी परंपराओं में छिपा जल ज्ञान आज भी भविष्य के लिए उपयोगी हो सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि पानी बचाना केवल पानी की मात्रा बचाना नहीं है, पानी को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: तालाब, नदी या नाले में कचरा डालना, प्लास्टिक फेंकना या गंदे पानी को बिना उचित व्यवस्था के जल स्रोतों तक पहुंचने देना जल प्रदूषण को बढ़ा सकता है। इसीलिए श्रोताओं, गांव और शहर दोनों जगह कचरे का उचित प्रबंधन, प्लास्टिक के उपयोग में कमी और जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: जी जी,
1: प्रकृति हमें हवा, पानी, भोजन, मिट्टी, लकड़ी, औषधीय पौधे और बहुत सारे संसाधन देती है। लेकिन श्रोताओं, अगर हम केवल लेते रहें और प्रकृति को वापस कुछ न दें तो उसका संतुलन बिगड़ सकता है। एक पेड़ लगाना, जल स्रोत बचाना, मिट्टी को प्रदूषण से बचाना, पशु पक्षियों के लिए पानी रखना और कचरे को सही स्थान पर डालना, ये प्रकृति को कुछ लौटाने के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीके हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि प्रकृति संरक्षण की आदत बचपन से विकसित की जा सकती है। बच्चों को पानी की कीमत समझाना, पौधों की देखभाल करवाना और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भविष्य की मजबूत नींव है, क्योंकि युवा नई तकनीक और नए विचारों के माध्यम से जल संरक्षण के लिए स्थानीय समाधान खोज सकते हैं। वे गांव में जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जल स्रोतों की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं और लोगों को छोटे छोटे संरक्षण उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जल और प्रकृति किसी एक परिवार या व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, इनका लाभ पूरे समाज को मिलता है, इसलिए इनके संरक्षण में भी पूरे समुदाय की भागीदारी आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
0: गांव में ग्राम सभा के माध्यम से जल स्रोतों की स्थिति, वर्षा जल संरक्षण, पौधारोपण, स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल जैसे विषयों पर चर्चा की जा सकती है। जब गांव मिलकर किसी तालाब को बचाने, किसी जल स्रोत को साफ रखने या पेड़ों की देखभाल करने का निर्णय लेता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दे सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल अपने निर्णय लेने का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तो तब मजबूत होता है जब गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी भी समझता है। जिस गांव में पानी की कीमत समझी जाती है, जहां जल स्रोतों की देखभाल होती है, जहां पेड़ों को बचाया जाता है और जहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समझदारी से किया जाता है, वह गांव अपने भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: जल और प्रकृति की रक्षा वास्तव में आत्मनिर्भर और जिम्मेदार समाज की पहचान है। श्रोताओं, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे अकेले के प्रयास से क्या हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन हमेशा, हम कहते हैं कि छोटे कदमों से ही शुरू होता है।
0: जी जी,
1: नल को खुला न छोड़ना, पानी की टंकी को ओवरफ्लो होने से बचाना, घर में पानी की समझदारी से उपयोग करना, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, कचरा जल स्रोत में न डालना, ये सारे छोटे छोटे जो कदम है वो हमें करने चाहिए। जब एक परिवार ऐसा करता है अंजलि, तो एक बदलाव होता है। जब पूरा मोहल्ला ऐसा करता है तो बड़ा बदलाव होता है। जब पूरा गांव ऐसा करता है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य तैयार होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि जल की हर बूंद में भविष्य की एक संभावना छिपी है और प्रकृति की हर सांस में जीवन की उम्मीद। आज हम प्रकृति को जिस रूप में बचाएंगे, आने वाली पीढ़ियां उसी रूप में उसे पाएगी। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए केवल घर, खेती और संपत्ति ही छोड़कर न जाएं, बल्कि स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी, हरे भरे पेड़ और स्वास्थ्य पर्यावरण भी छोड़कर जाएं। याद रखिए कि पानी बचाना केवल आज की जरूरत पूरी नहीं करता बल्कि कल की प्यास बुझाने की तैयारी है।
1: बिल्कुल,
0: पेड़ बचाना केवल हरियाली बचाना नहीं बल्कि जीवन की सांस बचाना भी है। इसलिए हम सभी एक बात अपने जीवन में अपना सकते हैं कि पानी की हर बूंद का हम सम्मान करेंगे, प्रकृति से उतना ही लेंगे

0: साथ ही इस गीत के बाद ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम

0: విక్రమ్ సత్యస్వరాజ్ వాగడ్ రేడియో 90.8 FM కాంపూస్ కూపడా వాగ్ధరా క్యాంపస్ బాస్వాడా రాజస్థాన్ హమరా పిన్ కోడ్ నంబర్ హై 3200001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
2: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
2: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है खेल में छिपा है सेहत का राज को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम काम, पढ़ाई और मोबाइल में तो घंटों बिता देते हैं, लेकिन खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते।
0: जी हाँ।
1: जबकि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और खुशहाल जीवन की मजबूत नींव है। बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए खेल किसी दवा से कम नहीं।
0: जी हाँ।
1: आइए श्रोता साथियों, आज हम यही जानेंगे कि आखिर खेल हमारी सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है और कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे शामिल कर सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं खेल में छिपा है सेहत का राज।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। यदि शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है और श्रोता साथियों सोच सकारात्मक है तो जीवन के हर चुनौती का सामना हम आसानी से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में मोबाइल कंप्यूटर की बढ़ती निर्भरता, शारीरिक श्रम की कमी, साथ ही असंतुलित खान पान के कारण श्रोता साथियों अनेक लोग कम उम्र में ही मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव और हृदय रोगों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों यदि कोई सबसे सरल, प्राकृतिक और आनंददायक उपाय है जो कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है वो है श्रोता साथियों खेल।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि मनुष्य का जो शरीर है वो चलने फिरने के लिए बना हुआ है। जब शरीर सक्रिय रहता है श्रोता साथियों तब रक्त संचार अच्छा होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर ऊर्जा से भर जाता है।
0: बिल्कुल
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि खेल हमें केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं।
0: जी हाँ।
1: जो लोग नियमित रूप से खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, उनमें कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। वे अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और सकारात्मक सोच वाले होते हैं।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि खेल से मिलने वाले कई शारीरिक लाभ हैं जो हम सभी को पता होना चाहिए। खेल से हमारा जो शरीर है वो मजबूत बनता है। दौड़ना, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्सी कूदना जैसे खेल शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। खेलने से दिल की कार्यक्षमता बढ़ती है और रक्त संचार भी बेहतर रहता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, आज मोटापा एक सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। खेल अतिरिक्त कैलोरी जलाकर वजन नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।
0: जी हाँ।
1: नियमित शारीरिक गतिविधियां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है, इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम खेल खेलते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
0: जी हाँ।
1: इससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा कम होता है और बढ़ते बच्चों और युवाओं के लिए खेल हड्डी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल
1: इसलिए श्रोता साथियों खेल के कई सारे लाभ हैं। अगर हम खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य में खेलों की क्या भूमिका है तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल
0: ऐसे में हम देखते हैं श्रोता साथियों कि खेल है वो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन बनाते हैं जो मन को प्रसन्न रखते हैं। इससे हमारा तनाव है वो कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही श्रोता साथियों हमारा मन है वो सकारात्मक रहता है।
1: बिल्कुल
0: नियमित खेल खेलने वाला व्यक्ति श्रोता साथियों कम तनाव का महसूस करता है, अच्छी नींद लेता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है। साथ ही अंजलि जी हम देखते हैं कि ध्यान और एकाग्रता की शक्ति है वो भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल
0: और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना वो जानता है।
1: बिल्कुल इसलिए कहा जाता है मनीषा कि खेल शरीर ही नहीं मन का भी उपचार करता है। श्रोता साथियों आज अधिकांश बच्चे मोबाइल और टीवी में अधिक समय बिताने लगे हैं, इससे उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो रही है। खेल बच्चों को अनुशासन सिखाता है, टीम की भावना विकसित करता है, हार जीत स्वीकार करना सिखाता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास पैदा होता है और रचनात्मक सोच विकसित होती है। बच्चों को रोज कम से कम श्रोता साथियों 1 घंटा खुले मैदान में खेलने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो स्वस्थ जीवन जी सके।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से खेलों में छुपा है सेहत का राज इस विषय को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना। गीत से पहले हम जान पाए कि खेल जो है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ कैसे पहुंचाता है, बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है, और यही अब बात आती है महिलाओं के लिए खेल क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, अक्सर महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती है लेकिन अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती है। यदि महिलाएं प्रतिदिन कुछ समय खेल, तेज चलना और योग, रस्सी कूदना जैसी गतिविधियां अपनाएं तो शरीर स्वस्थ होगा, थकान कम होगी, मानसिक तनाव घटेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। श्रोता साथियों, स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की आधारशिला होती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ युवावस्था भी खेल का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। युवावस्था ऊर्जा का समय है। यदि ऊर्जा खेल में लगे तो युवा नशे, गलत संगति और अनेक सामाजिक बुराइयों से दूर रह सकते हैं। खेल युवाओं में अनुशासन, समय प्रबंधन, नेतृत्व, धैर्य, मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना विकसित करते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल अंजलि जी। यहीं अगर हम बात करें कि आधुनिक जीवन शैली में खेलों की आवश्यकता क्यों है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज अधिकतर लोग ही वो घंटों तक मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इससे अंजलि जी, हम देखते हैं कि मोटापा बढ़ता है, आंखों पर असर पड़ता है, साथ ही हमारे गर्दन और कमर में दर्द होने लगता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है श्रोता साथियों, नींद प्रभावित होती है। अगर श्रोता साथियों, यदि हम प्रतिदिन कम से कम 45 से 60 मिनट हम खेलों के लिए निकालते हैं तो ये सारी समस्याएं वो काफी हद तक कम हो सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर अंजलि जी बात करें कि खेल हमें जीवन जीना कैसे सिखाते हैं, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि खेल केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाते बल्कि हमारे व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। खेल हमें सिखाते हैं, मेहनत का महत्व हमें सिखाते हैं, नियमों का पालन करना सिखाते हैं, टीम वर्क के साथ काम करना सिखाते हैं, धैर्य रखना, हार से सीखकर आगे बढ़ना और साथ ही श्रोता साथियों, जीत में विनम्र रहना सिखाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ये गुण जीवन के हर क्षेत्र में श्रोता साथियों हमें सफलता दिलाते हैं।
0: जी हाँ मनीषा, खेल का अर्थ केवल प्रतियोगिता नहीं होता है। बुजुर्ग भी हल्की और शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि सुबह शाम टहलना, हल्का योग करना, आसान व्यायाम करना, पार्क में समूह गतिविधि करना। इससे शरीर चुस्त रहता है और अकेलेपन की भावना भी कम होती है। श्रोता साथियों, हमारे गांवों में पहले बच्चे और युवा कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, सितोलिया, रस्सा कस्सी, लंगड़ी दौड़ जैसे खेल खेलते थे। इन खेलों में पैसे नहीं लगते लेकिन पूरा शरीर सक्रिय रहता है। आज जरूरत है मनीषा कि हम इन पारंपरिक खेलों को फिर से जीवित रखें। आज मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है लेकिन जब मोबाइल खेलने की जगह ले लेता है तब समस्या शुरू होती है।
1: जी हाँ।
0: तो मोबाइल देखने से आंखों पर असर पड़ता है, गर्दन और पीठ में दर्द होता है, नींद खराब होती है, मोटापा बढ़ता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, जितना समय स्क्रीन पर बिताएंगे उतना ही समय शारीरिक गतिविधियों के लिए भी निकालें, क्योंकि हम देखते हैं कि खेल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: गांव में खेल की संस्कृति को बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल दिवस मनाना चाहिए, पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होनी चाहिए, स्कूल में खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बेटियों को बराबरी से खेलने का अवसर मिलना चाहिए, खाली मैदान सुरक्षित रखे जाए, परिवार स्वयं बच्चों को खेलने के लिए भी प्रेरित कर सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज लोगों को केवल दवाइयों के बारे में नहीं श्रोता साथियों बल्कि स्वस्थ जीवन शैली के बारे में भी जागरूक करना आवश्यक है। यदि विद्यालय, परिवार, ग्राम पंचायत, सामुदायिक संस्था और साथ ही रेडियो मिलकर खेलों को बढ़ावा दी तो हम देखते हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य वो सुधरेगा, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति है वो कम होगी, बुजुर्ग हैं वो अधिक सक्रिय रहेंगी, समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही हम देखते हैं कि भविष्य की पीढ़ी है वो अधिक स्वस्थ रह पाएगी।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि खेल वास्तव में स्वस्थ जीवन का आधार है। यह शरीर को शक्ति, मन को प्रसन्नता और जीवन में अनुशासन प्रदान करता है। खेल हमें केवल फिट नहीं बनाते हैं श्रोता साथियों बल्कि बेहतर इंसान भी बनाते हैं। आज जब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां श्रोता साथियों तेजी से बढ़ रही हैं, तब खेलों को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आधुनिक जीवन ने हमें अनेक सुविधाएं दी हैं, लेकिन इन्हीं सुविधाओं ने हमारी सक्रियता भी कम कर दी है। वाहन ने पैदल चलना घटा दिया, मोबाइल ने मैदानों की रौनक कम कर दी, व्यस्त दिनचर्या ने खेल को फुर्सत का काम बना दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि खेल कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की अनिवार्य आदत है। यह हमें केवल बीमारियों से बचाने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य, सहयोग, नेतृत्व और सकारात्मक सोच का जीवन भर साथ देने वाला शिक्षक भी है। हम अपने घर, स्कूल और गांव में ऐसे संस्कृति विकसित करें श्रोता साथियों, जहां खेल को समय की बर्बादी नहीं बल्कि स्वास्थ्य और व्यक्तित्व निर्माण में निवेश माना जाए। बच्चों के हाथों में केवल मोबाइल नहीं बल्कि गेंद, बैट, रस्सी और कबड्डी की रेखाएं भी हों। युवा अपनी ऊर्जा को खेल के मैदान में दिशा दें, महिलाएं अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों को स्थान दें और बुजुर्ग अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय रहें। जब पूरा समुदाय खेल अपनाएगा तब केवल स्वस्थ व्यक्ति ही नहीं बल्कि अधिक ऊर्जावान, सहयोगी और खुशहाल समाज का निर्माण होगा। श्रोता साथियों, स्वस्थ रहने का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय हमारे अपने कदमों की सक्रियता और खेल के मैदानों से जुड़ा है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए आज ही संकल्प लें कि हर दिन थोड़ा खेलेंगे, हर दिन स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार व समाज को भी सक्रिय जीवन की प्रेरणा देंगे।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपने करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मलिन जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़ वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
4: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके
3: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
2: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ने आपड़े मय देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे
3: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है
4: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
3: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारी आपसे बातचीत होती है एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा ही एक नया विषय हम लेकर हाजिर हुए हैं श्रोता साथियों। साथियों आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि हमें सपनों को सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि जीना शुरू कर देना है, क्योंकि हम देखते हैं कि सपने शब्द सुनते ही हमारे मन में बहुत सारी तस्वीरें बनने लगती है। जैसे कि कोई अच्छा किसान बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई अपना छोटा सा कारोबार जो है वो शुरू करना चाहता है, तो कोई चाहता है श्रोता साथियों कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तो कुछ लोगों का सपना ये होता है कि उनका जो घर है वो खुशियों से भर जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या सिर्फ सपना देख लेने से सपना पूरा हो जाता है? अगर दोस्तों उत्तर हाँ होता तो शायद दुनिया में हर व्यक्ति सफल होता। हम देखते हैं कि सपना तभी अपना रूप लेता है जब वह हमारी रोज की आदतों, मेहनत और फैसलों का हिस्सा बन जाता है। और इसी चीज को लेकर आज के हमारे कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें होंगी साथियों। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो दोस्तों इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले हम सुन लेते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत, फिर मैं अपनी बातचीत को फिर से जारी रखूंगी। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद मैं आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छा विषय हमारा आप सभी के साथ जुड़ चुका है, हम बात कर रहे हैं साथियों कि सपनों को हमें सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि जीना शुरू कर देना चाहिए। साथियों, जैसा कि गीत से पहले भी कुछ छोटी मोटी बातें मेरी आपसे रही थी कि हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। कोई अच्छा शिक्षक बनना चाहता है, कोई अच्छा किसान बनना चाहता है, तो कोई छोटा सा कारोबार जो है उसे बड़ा करना चाहता है। साथियों, तो कुछ लोगों का सपना ये होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, ऐसे में प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ सपने सोच लेने से या देख लेने से पूरे हो जाते हैं? नहीं साथियों, उसके लिए हमें निरंतर मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है, त्याग करना होता है। साथियों, अगर मैं आपको बताऊं कि सपना देखना तो आसान है लेकिन उसे जीना कठिन होता है, ऐसा कई लोगों का सोचना होता है। दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है, सपने देखने पर कोई रोक नहीं होती साथियों, या कोई टैक्स नहीं लगता श्रोता साथियों, लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना पाते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि एक दिन मैं इस काम को शुरू करूंगा, या एक दिन मैं पढ़ाई अपनी पूरी कर लूंगा, या एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन दोस्तों, वह एक दिन महीनों में बदल जाते हैं, फिर सालों में, और फिर धीरे धीरे सिर्फ सपना ही इच्छा बनकर ये रह जाता है। दोस्तों, असल में समस्या सपने में नहीं होती, समस्या श्रोता साथियों सपने की शुरुआत करने में होती है। जी हाँ, इसलिए कई लोगों का ये मानना होता है कि सपने देखना तो आसान है लेकिन उसे जीना कठिन होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको बताऊं तो सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन टालने की आदत होती है, क्योंकि साथियों हम सोचते हैं कि ये काम मैं आज नहीं कल से शुरू करूंगा, या इस महीने नहीं अगले महीने से शुरू करूंगा, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। दोस्तों, कब वो धीरे धीरे इंतजार हमारी आदत बन जाता है हमें याद ही नहीं रहता। सच तो ये है साथियों कि समय कभी अपने आप नहीं आता, सही समय वही होता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। जो लोग शुरुआत कर देते हैं साथियों, वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, और जो इंतजार करते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। साथियों, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं समय आने पर ये चीज करूंगा या करूंगी, तो दोस्तों हो सकता है कि वो समय आपका कभी आए ही नहीं। आपके मन में श्रोता साथियों, जब भी ये हौसला आ जाए कि आज मुझे इस काम को करना है, तो आप उसी दिन से उस काम की शुरुआत कर दें। इससे क्या होगा श्रोता साथियों, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन एक न एक दिन आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रोता साथियों, सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों एक कहावत कही गई है कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो श्रोता साथियों, ये बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है, अगर इसे आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपके सपनों को उड़ान मिल जाएगी, और जब सपनों को उड़ान मिल जाती है श्रोता साथियों, तो सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से, जैसा कि कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें तो बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों के उड़ान में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम सपनों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था श्रोता साथियों, कि सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि हम काम को टालने लगते हैं। श्रोता साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि आपका ये सपना है, तो आप उसको पूरा करने में अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर आप समय की राह देखते रहेंगे श्रोता साथियों, तो सही समय कभी नहीं आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि सही समय आने पर इस काम को मैं करूँगा, तो दोस्तों वो समय बिल्कुल नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि इस काम को अगर मैं कल करूँ, तो कल परसों बन जाएगा, परसों श्रोता साथियों तरसों बन जाएगा, और तरसों के बाद आप देखेंगे कि उस काम को करने में महीने गुजर जाएंगे। इसलिए श्रोता साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपने इस सपने को पूरा करना है, तो उसी समय उसकी तैयारी में आप जुट जाइए। अब यही श्रोता साथियों, अक्सर लोग सोचते हैं कि सपने केवल शहरों में रहने वालों के ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। गांव का किसान भी सपने देखता है, एक मजदूर भी सपना देखता है, एक गृहिणी घर में रहकर भी सपने देखती है, एक छात्र सपना देखता है श्रोता साथियों, बुजुर्ग भी चाहते हैं कि उनका परिवार खुश रहे। दोस्तों, ये सारे जो सपने हैं वो सम्मान के योग्य हैं। सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, सपना सिर्फ अपना होता है दोस्तों। इसलिए सपनों को जीने का मतलब सिर्फ उनके बारे में बात करना नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि हर दिन ऐसा कोई काम करना है जो हमें उस सपने के थोड़ा और करीब लेकर जाए। जैसे कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो रोज उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा दोस्तों, और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने के सपने को जीना होगा। अगर कोई खेती बेहतर करना चाहता है और ये उसका सपना है, तो ऐसे में नई जानकारियों को लेना भी सपने जीने जैसा है। अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसकी छोटी सी बचत करना भी उसके लिए सपने जीने जैसा है। दोस्तों, सपनों की शुरुआत बड़े कामों से नहीं होती, सपनों की शुरुआत छोटी आदतों से होती है। इसलिए आप आज से ही सपनों को पूरा करने की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी साथियों। लेकिन असफलता का मतलब ये नहीं है साथियों कि आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सपने

पूरे होते हैं, लेकिन दोस्तों सपने परिश्रम त्याग भी मांगते हैं। इसलिए आप सपनों को पूरा करने में पीछे मत हटिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहिए साथियों। जैसे कि जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं, तो हमें कई बार डर लगता है कि अगर असफल हो गए तो। दोस्तों ये काफी सामान्य बात है, डर तो सभी को लगता है। जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो हमारे मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लोग हम पर हंसेंगे तो क्या होगा, अगर हमारी मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा। दोस्तों ये जो सारे सवाल हैं वो हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन अगर हम सपने पूरे करने के लिए तत्पर हैं साथियों, तो हमें ये याद रखना है कि डर रास्ता नहीं रोकता, डर के कारण लिया गया फैसला रास्ता रोक देता है। साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता साथियों, साहस का तो मतलब है कि डर के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है। साथियों आजकल हम अपनी जिंदगी कम और दूसरों की जिंदगी ज्यादा देखने लगे हैं। वह आगे निकल गया, उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, उसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन श्रोता साथियों किसी की पूरी कहानी हमें नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ उसका परिणाम दिखाई देता है। उसके पीछे की उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, धैर्य नहीं देखते हम। इसलिए तुलना नहीं बल्कि सपनों से प्रेरणा आप लीजिए। सफलता कभी श्रोता साथियों अचानक नहीं मिलती, सफलता प्राप्त करने के लिए ढेर सारा संघर्ष करना पड़ता है। साथियों कोई भी पेड़ एक रात में फल नहीं देता, उसे समय लगता है, उसे धूप भी सहनी पड़ती है और बारिश भी सहनी पड़ती है। ठीक वैसे ही इंसान की मेहनत भी धीरे धीरे फल देती है साथियों। अगर आज आपने मेहनत की है तो उसका परिणाम श्रोता साथियों कल भी आपको नहीं मिले, फिर भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हर प्रयास हमें पहले से बेहतर बनाता है। इसलिए श्रोता साथियों सपनों की सच्चाई को पहचानिए, उसके पीछे के लक्ष्य को पहचानिए। श्रोता साथियों अगर आप सपनों में जीना शुरू कर देंगे तो आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ दोस्तों क्या आपको पता है कि सपनों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये नहीं है कि वो पूरे हो जाएं, बल्कि ये है साथियों कि उन्हें पूरा करने की जो यात्रा होती है वो हमें पूरा बदल देती है। हम अधिक धैर्यवान बन जाते हैं, अधिक समझदार बन जाते हैं, जिम्मेदार बन जाते हैं साथियों, और आत्मविश्वासी बन जाते हैं, और यही बदलाव हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आज आपसे ढेर सारी बातें हुई। हमने बात की कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, और हमें सिर्फ सपनों को सोचना नहीं है बल्कि उसे जीना शुरू कर देना है। तो बातें जैसा कि ढेर सारी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी साथियों कि सपनों को पूरा करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक सच्चे इरादे की, रोज की छोटी छोटी कोशिशों की और हार मानने से इनकार करने की सोच की। साथियों, जो लोग अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहते हैं वे अक्सर परिस्थितियों का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों को जीना शुरू कर देते हैं साथियों, वे परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में बदलना सीख लेते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, जिंदगी कभी एक ही दिन में नहीं बदलती, यह हर सुबह लिए गए छोटे फैसलों, हर शाम की गई ईमानदारी से मेहनत और हर असफलता के बाद दोबारा उठ खड़े होने के साहस से बदलती है। इसलिए अपने सपनों को भविष्य की किसी तारीख पर मत टालिए, उन्हें आज की आदत आप बनाइए, आज की सोच बनाइए और आज के कर्म में उतारिए। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में, एक नई सोच के साथ में और जीवन को आगे बढ़ाने वाली एक नई प्रेरणा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुके जाएंगा। खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
1: होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
3: होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, हम अक्सर कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन क्या केवल यह कह देना काफी है? अगर नल खुला रह जाए, बाल्टी भरने के बाद पानी बहता रहे, खेत में जरूरत से ज्यादा पानी लगाया जाए, घर में आरओ या दूसरे साधनों से निकलना पानी जो है वो बिना उपयोग के बहा दिया जाए, तो क्या हम सच में पानी की कीमत समझ रहे हैं?
0: बिल्कुल।
1: आज का हमारा विषय है कि हर बूंद का हिसाब, जल संरक्षण रोजमर्रा की जिम्मेदारी, क्योंकि जल संरक्षण कोई ऐसा काम नहीं है जो केवल सरकार, पंचायत, किसान या किसी संस्था की जिम्मेदारी हो।
0: जी हाँ।
1: पानी बचाने की शुरुआत हमारे अपने घर, आंगन, खेत, दुकान और रोजमर्रा की आदतों से होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने सही कही। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी जानते हैं कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं।
1: जी जी।
0: और ये तो हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे दोस्तों को हम गीत सुनवाए यहाँ पर।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं हर बूंद का हिसाब जल संरक्षण रोजमर्रा की जिम्मेदारी को लेकर।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले भी बताया था कि कहा जाता है कि जल है तो कल है, लेकिन आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे पास पानी है या नहीं, सवाल ये भी है कि हम पानी का इस्तेमाल कितनी समझदारी से कर रहे हैं। क्योंकि हम अक्सर नल खोलते हैं, पानी बहता रहता है, हम उसे सामान्य बात समझकर आगे बढ़ जाते हैं साथियों, लेकिन हमें याद भी रखना चाहिए कि जो पानी हमारे नल से बेवजह बह रहा है वह किसी और के जीवन की जरूरत हो सकता है। हम देखते हैं कि पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसका बहुत छोटा हिस्सा ही मनुष्य के लिए सीधे उपयोग होने योग्य पानी मीठा होता है। बढ़ती आबादी, बदलता मौसम, भूजल का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और पानी की बर्बादी ने जल संकट को गंभीर बना दिया है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में जल संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की रोजमर्रा की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि हर बूंद का हिसाब जो है वो हमें रखना ही होगा, क्योंकि हमारे आसपास पानी की उपलब्धता हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं कुएं हैं और हेडपंप है, तो कहीं ट्यूबवेल पर निर्भरता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कहीं बारिश ही पानी का सबसे बड़ा सहारा है। श्रोता साथियों, बारिश का पानी धरती पर गिरता है, लेकिन उसका कितना हिस्सा हम रोक पाते हैं, कितना पानी जमीन के अंदर जाता है, कितना पानी बहकर नालों और नदियों में चला जाता है, और कितना पानी हम अपनी लापरवाही से घर में ही बर्बाद कर देते हैं, इन सवालों पर सोचने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कशिश कई बार पानी की बर्बादी किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से होती है। दांत साफ करते समय नल खुला छोड़ देना, सब्जी धोते समय जरूरत से ज्यादा पानी बहाना, वाहन धोने में पाइप लगातार चलाना, टंकी भरने के बाद मोटर बंद करने में देर करना, ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें रोज किया जाए तो हजारों घरों में दोहराया जाए तो पानी की जो बड़ी मात्रा है वो व्यर्थ हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: इससे पानी बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आदतों को देखना होगा, क्योंकि हर बूंद का हिसाब रखने का मतलब यह नहीं है कि हम पानी की हर बूंद को गिने।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि दोस्तों हमने कभी ये सोचा है कि एक दिन में अगर हमारे घर में कितना पानी व्यर्थ जाता है, जैसे कि दांत साफ करते समय हम खुला नल छोड़ देते हैं, नहाते समय जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, घर या गाड़ी की सफाई में जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। अंजलि जी, ऐसी छोटी छोटी आदतें मिलकर बहुत बड़ी बर्बादी बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें संकल्प लेने की जरूरत है कि जितनी जरूरत होगी उतना ही पानी हम लेंगे। श्रोता साथियों, नल खुला छोड़ने के बजाय काम के अनुसार पानी का आप इस्तेमाल करें, खराब नल और पाइप तुरंत ठीक करवाएं, घर में पानी की रिसाव पर नजर रखें, सब्जियां और फल धोने के पानी का उपयोग पौधे में कर सकते हैं हम, घर के कामों में जो इस्तेमाल हुआ ज्यादा पानी होता है उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, इस बात को भी हम सुनिश्चित करें।
1: जी जी कशिश, आपने सही कहा, यही बात आती है कि हर बूंद के हिसाब की जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार करें और उसकी बर्बादी को रोकें। जैसे हम घर का राशन सोच समझकर खर्च करते हैं, बिजली का बिल देखते हैं, अपनी कमाई और खर्च का हिसाब रखते हैं, वैसे ही पानी को लेकर भी हमारी जिम्मेदारी जरूरी है। हम खुद से पूछ सकते हैं श्रोता साथियों कि घर में रोज कितना पानी इस्तेमाल होता है, क्या कहीं नल या पाइप से पानी रिस रहा है, क्या टंकी भरने के बाद मोटर समय पर बंद होती है, क्या कपड़े और बर्तन धोते समय जरूरत से ज्यादा पानी खर्च होता है, क्या रसोई में इस्तेमाल किए गए कुछ पानी को पौधे के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्या बारिश के पानी को घर या खेत में रोकने की कोई व्यवस्था है। जब हम इन सवालों का ध्यान देते हैं तभी जल संरक्षण हमारी आदत बनना शुरू होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों तो आपको बताना चाहेंगे कि जल संरक्षण की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए, क्योंकि जल संरक्षण के लिए हमेशा किसी बड़े अभियान की जरूरत नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: इसकी शुरुआत हम छोटे स्तर पर कर सकते हैं, और अगर हमारे घर से करते हैं तो ये तो और भी बेहतर होगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को बचपन से ही पानी के महत्व के बारे में हम समझाएं, परिवार में ये आदत विकसित करें कि कोई भी व्यक्ति बिना जरूरत के पानी नहीं बहाएगा। जैसे कि बच्चा अपनी मम्मी से कह सकता है कि मम्मी नल बंद कर दीजिए, पानी क्यों बहने दे रही हैं?
1: बिल्कुल,
0: तो माँ उसकी बात को समझकर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, पानी की एक एक बूंद कीमती होती है।
1: जी जी,
0: लेकिन श्रोता साथियों हम देख सकते हैं कि बदलाव कितना आसान है, एक छोटा सा सवाल और एक छोटी सी आदत हमें बड़ी जिम्मेदारी की ओर ले जा सकती है। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में वर्षा जल संरक्षण की परंपरा काफी पुरानी है, अलग अलग क्षेत्रों में तालाब है, बावड़ियां हैं, कुएं हैं और अन्य जल स्रोत बनाए जाते हैं। आज आवश्यकता है कि हम आधुनिक तकनीक के साथ उन परंपरागत तरीकों को भी महत्व दें।
1: बिल्कुल,
0: वर्षा जल संचयन यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग करना चाहिए हम सभी को। उसे जमीन में पहुंचाकर श्रोता साथियों भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जो कि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है।
1: जी हाँ कशिश, हम यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि पानी बचाने के लिए हमेशा बड़ी व्यवस्था या ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। रसोई में सब्जियां धोने के बचा पानी हम पौधों में डाल सकते हैं। बर्तन धोते समय नल लगातार खुला रखने के बजाय जरूरत के अनुसार पानी लिया जा सकता है।
0: जी,
1: कपड़े धोने में मशीन या बाल्टी का प्रयोग सोच समझकर किया जा सकता है। नहाने में जरूरत से ज्यादा पानी बहाने से बचा जा सकता है। और दांत साफ करते समय नल बंद रखना भी जरूरी है। अगर घर में नल टपक रहा है तो उसे बाद में ठीक करवा लेंगे, कहकर छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी लीकेज भी लंबे समय में कई गुना पानी को बर्बाद कर सकती है। इसी तरह पानी की टंकी में ओवरफ्लो की समस्या है तो फ्लोट वॉल्व या दूसरी उचित व्यवस्था कराकर पानी को बहने से रोका जा सकता है। कहना चाहेंगे कशिश हमारे श्रोता साथियों से कि हमारे ग्रामीण जीवन और खेती में पानी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: खेती में पानी का उपयोग फसल की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। हर फसल को हर समय एक जैसी मात्रा में पानी की जरूरत नहीं होती। मिट्टी की स्थिति, मौसम, फसल और उसकी अवस्था देखकर सिंचाई का निर्णय लेना उपयोगी होता है। जहाँ
0: हाँ।
1: संभव हो किसान मेड़बंदी, खेत तालाब, छोटे जल संचयन ढांचे, मल्चिंग और उचित सिंचाई पद्धतियों जैसी स्थानीय व्यवस्थाओं पर ध्यान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: खेत में बारिश का पानी तेजी से बह जाने के बाद यदि उसे खेत में रोकने की व्यवस्था हो तो मिट्टी में नमी बनी रहने में मदद मिल सकती है। जल संरक्षण का अर्थ श्रोता साथियों केवल सिंचाई का पानी कम करना नहीं है, बारिश की एक एक बूंद को खेत और जमीन के लिए उपयोगी बनाना भी जल संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हमारी कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: श्रोता साथी, उस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि जल संरक्षण के संकल्प को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं साथियों, यही आपसे कहना चाहेंगे कि कहा जाता है कि जल है तो कल है, ये जो बात है अंजलि जी, वो काफी हमारे श्रोता साथियों के लिए और हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्णता रखती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों जल न सिर्फ हमारे जीवन के लिए उपयोगी है बल्कि हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं वहां पर भी हम जल का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें कि केवल पानी बचाना ही नहीं, पानी को प्रदूषण से बचाना भी जरूरी है, तो जल संरक्षण का मतलब सिर्फ पानी की मात्रा बचाना नहीं होता, पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी उतना ही जरूरी होता है। हम देखते हैं अंजलि जी कि नदियों, तालाबों और जल स्रोतों में कचरा हमें नहीं डालना चाहिए। रसायनों और गंदे पानी को जल स्रोतों में जाने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि पानी मौजूद है लेकिन प्रदूषित है तो वह हमारे लिए उपयोगी ही नहीं रह जाता।
1: बिल्कुल कशिश, बारिश हमारे लिए पानी का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन बारिश का पानी अगर बिना रुके बह जाए तो उसका बड़ा हिस्सा हमारे उपयोग में नहीं आ पाता।
0: बिल्कुल,
1: गांव में पुराने समय से ही तालाब, कुएं, बावड़ियां, नदियां और दूसरे जल स्रोत बनाए जाते रहे हैं। इनका उद्देश्य श्रोता साथियों केवल पानी जमा करना नहीं था बल्कि समुदाय की जरूरत के लिए पानी को सुरक्षित रखना भी था। आज हमें अपने स्थानीय जल स्रोतों की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। तालाब में गंदगी तो नहीं जा रही, कुएं के आसपास कचरा तो नहीं पड़ा, वर्षा जल के रास्ते बंद तो नहीं हुए, गाँव की जो नालियां हैं, जल स्रोत जो हैं, वो प्रदूषित तो नहीं कर रही। इन बातों की जिम्मेदारी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: जल स्रोत सामुदायिक संपत्ति है, इसलिए उनकी सुरक्षा भी सामुदायिक जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चों में छोटी उम्र से पानी की कीमत समझना बहुत जरूरी है। जब हम बच्चों को छोटी उम्र से ही इस तरीके के संस्कार देते हैं तो आगे चलकर वे सीख पाते हैं कि हमें किस तरीके से इन सारी चीजों की रक्षा करनी है। बच्चों को हम बता सकते हैं कि नल खुला छोड़ना सही नहीं है, पानी से खेलते समय उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, और घर में कहीं पानी की बर्बादी दिखाई दे तो बड़ों को बताना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: स्कूल और घर में बच्चे मिलकर छोटे छोटे संदेश बना सकते हैं। नल बंद करें, पानी बचाएं, आज बचाया पानी कल आएगा काम, पानी की हर बूंद अनमोल है। इस तरीके से जब बच्चे पानी बचाने की आदत सीखेंगे तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें तो जल संरक्षण केवल व्यक्तिगत आदतों तक सीमित नहीं रहती है, मोहल्ले, गांव और शहर सभी स्तरों पर सामूहिक प्रयास जरूरी होते हैं। साथ ही दोस्तों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, पेड़ लगाना, भूजल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और लोगों में जागरूकता फैलाना, ये ऐसे कई कदम हैं जिनमें समाज की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम सभी को ये समझना होगा कि पानी कोई असीमित संसाधन नहीं है। आज हम जिस पानी को बचाएंगे वही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध होगा। हमारे सामने विकल्प साफ है, पानी को यूं ही बहने दे या हर बूंद को बचाने की आदत डाले।
1: बिल्कुल,

0: हम सभी को मिलकर छोटे से संकल्प लेने चाहिए कि हम बिना जरूरत नल खुला नहीं छोड़ेंगे, पानी के रिसाव को नजरअंदाज नहीं करेंगे, घर में पानी का पुनः उपयोग जहां संभव हो वहीं करेंगे, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करेंगे, तालाब कुएं और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाएंगे, साथ ही साथ पर्यावरण और समाज में भी जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे।
1: बिल्कुल कशिश, जल संरक्षण की सबसे बड़ी ताकत सामुदायिक भागीदारी है। अगर एक व्यक्ति अपने घर में पानी बचाता है तो अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन अगर पूरा मोहल्ला, पूरा गाँव और पूरी पंचायत पानी बचाने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए तो उसका प्रभाव कहीं बड़ा हो सकता है।
0: जी।
1: गांव में लोग मिलकर ये तय कर सकते हैं कि सार्वजनिक नल के आसपास पानी व्यर्थ नहीं बहने देंगे, खराब नल और पाइप की सूचना जो है वो समय पर दूसरे व्यक्ति को देंगे, तालाब और कुएं में कचरा नहीं डालेंगे, वर्षा जल को रोकने के स्थानीय उपायों को बढ़ावा देंगे, पुराने जल स्रोतों की सफाई और देखभाल में सहयोग करेंगे, खेतों में पानी का उपयोग फसल की जरूरत के अनुसार करेंगे। यानी श्रोता साथियों, जल संरक्षण केवल एक अभियान बनकर कुछ दिनों तक न चले बल्कि हमारे व्यवहार का हिस्सा बने।
0: जी।
1: पानी की मात्रा बचाना ही पर्याप्त नहीं है श्रोता साथियों, पानी को प्रदूषण से बचाना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम तालाब, नदी, कुएं और अन्य जल स्रोतों में कचरा, प्लास्टिक, गंदा पानी या रासायनिक पदार्थ डालते हैं तो उपलब्ध पानी भी उपयोग के लायक नहीं रह सकता।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जल संरक्षण के साथ हमें जल स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। हमारा जल साफ रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का महत्व और उपयोगिता दोनों बनी रहेंगी।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, आगे ये बातें हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि पानी की कहानी केवल नल और बाल्टी की कहानी नहीं है, यह हमारे खेत की कहानी है, हमारे पशुओं की कहानी है, हमारे जंगलों की कहानी है, हमारे घर की कहानी है और आने वाली पीढ़ियों की कहानी है। आज जब हम जितना पानी बचाएंगे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हम कल से कम करेंगे। इसलिए आज से एक छोटा संकल्प लें कि नल जरूरत पर ही खोलें, पानी की जो लीकेज है उसको नजरअंदाज न करें, बारिश के पानी को रोकने का प्रयास करें, स्थानीय तालाब, कुएं और जल स्रोत को साफ रखें और अपने परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों को भी पानी बचाने के लिए प्रेरित करें।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि श्रोता साथियों, पानी हमारे जीवन की ऐसी जरूरत है जिसका कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। भोजन के बिना कुछ समय गुजारा जा सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए पानी को केवल उपयोग करने की चीज समझना पर्याप्त नहीं है, इसके प्रति जिम्मेदारी का भाव रखना भी जरूरी है। हर बूंद का हिसाब एक सोच है, ऐसी सोच जिसमें हम पानी को मुफ्त और असीमित मानकर बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसकी उपलब्धता और भविष्य दोनों को ध्यान में रखते हैं। हमारे घर का एक बंद नल, खेत में सही समय पर की गई सिंचाई, बारिश के पानी को रोकने वाली एक छोटी सी मेड़, साफ रखा गया एक तालाब, समय पर ठीक किया गया एक रिसर्च पाइप, ये सभी छोटे कदम हैं, लेकिन इन्हीं छोटे कदमों से पानी की बड़ी बचत संभव होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, हम सभी को मिलकर यह समझना होगा कि पानी कोई असीमित संसाधन नहीं है। आज हम जिस पानी को बचाएंगे वही आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध होगा, तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही भविष्य बचता है।
0: बिल्कुल,
1: पानी बचाना कोई एक दिन का अभियान तो नहीं है, बल्कि हर दिन निभाई जाने वाली एक जिम्मेदारी है। श्रोता साथियों, आज जब आप अपने घर जाएं तो बस एक बात गौर कीजिएगा, कहीं कोई नल बेवजह तो नहीं बह रहा, कहीं पानी जरूरत से ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे और अभी से होती है। हम सभी को मिलकर ये कहना चाहिए अंजलि जी कि हर बूंद का हिसाब हम रखेंगे, जल की बर्बादी को हम रोकेंगे, जल बचाएंगे, अपना आज और आने वाला कल भी बचाएंगे।
0: बिल्कुल कशिश, पानी की बात करते समय हम अक्सर भविष्य की चिंता करते हैं कि आने वाले वर्षों में पानी कम न हो जाए, लेकिन असल सवाल यह भी है कि आज हमारे पास जो पानी मौजूद है हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बनता, वो हमारी आज की आदतों से तैयार होता है। हमारे आसपास पानी का कोई स्रोत है तो कुआं, तालाब, हैंडपंप, नदी, नाली और घर की टंकी, इनके पीछे प्रकृति का लंबा चक्र जुड़ा हुआ है। बारिश से पानी धरती पर आता है, मिट्टी उसे अपने भीतर समाती है, पेड़ पौधे जो हैं वो उसका उपयोग करते हैं, जल स्रोत में पानी जमा होता है। जब हम इन चक्र के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका असर धीरे धीरे हमारे जीवन पर दिखाई देने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जल संरक्षण का अर्थ केवल पानी कम खर्च करना नहीं है, इसका अर्थ है पानी के पूरे सफर को समझना, बारिश की बूंद को बह जाने से बचाना, जमीन में पानी पहुंचाने देना, जल स्रोतों को गंदगी से बचाना, भूजल का जरूरत के अनुसार उपयोग करना और इस्तेमाल करना, पानी का जहां संभव हो उसका पुनः उपयोग करना, ये सभी एक ही जिम्मेदारी के अलग अलग हिस्से होते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो श्रोता साथियों, भोजन, कपड़े, कागज और रोजमर्रा की अनेक वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी मात्रा में पानी लगता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जरूरत है कि अनुसार खरीदारी और भोजन की बर्बादी रोकना भी अप्रत्यक्ष रूप से जल संरक्षण ही है। अंजलि जी, कई क्षेत्रों में ट्यूबवेल और बोरवेल के कारण जमीन के नीचे का पानी तेजी से निकाला जा रहा है।
0: जी जी,
1: जितना भूजल निकाला जाएगा उसके पुनर्भरण के लिए वर्षा के पानी को जमीन तक पहुंचाना भी जरूरी है। साथ ही अगर बात करें खेती में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग काफी महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों खेतों में ऐसी सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है जिनसे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचे।
0: बिल्कुल,
1: इससे पानी की बचत के साथ साथ खेती की लागत भी कम हो जाएगी। साथ ही बात करें पेड़ और जल संरक्षण एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो पेड़ जो है वो मिट्टी में नमी बनाए रखने में और वर्षा के पानी को जमीन में पहुंचाने में मदद करते हैं, इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल वृक्षारोपण और पेड़ पौधों की देखभाल भी जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अंजलि जी।
0: जी हाँ, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि हमारे गांवों में जल संरक्षण की परंपरा कोई नई बात नहीं रही है। हमारे लोग मौसम, मिट्टी और जल स्रोतों को देखकर अपने जीवन की व्यवस्था करते थे। कुएं के पानी की सफाई, तालाब की देखभाल, खेत की मेड़ मजबूत करना और वर्षा के पानी को रोकना सामुदायिक जीवन का हिस्सा हुआ करता था। आज जरूरत है कि हम उस समझ को आधुनिक सुविधा के साथ जोड़े और पानी को केवल घर की जरूरत न मानकर पूरे क्षेत्र की साझा संपत्ति समझे। एक परिवार अपने घर में पानी बचा सकता है, किसान अपने खेत में पानी का बेहतर उपयोग कर सकता है, बच्चे अपने साथियों को जागरूक कर सकते हैं, महिलाएं घर की पानी संबंधित व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण निभा सकती है और गांव के लोग मिलकर सार्वजनिक जल स्रोतों की देखभाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब अलग अलग लोगों की ये छोटी जिम्मेदारी एक साथ आती है तब कशिश संरक्षण केवल नारा नहीं रहता बल्कि सामुदायिक व्यवस्था बन जाता है।
1: जी हाँ,
0: हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पानी बचाने का सबसे अच्छा समय वह है जब संकट सामने आ जाए। सही समय सबसे उससे पहले है, यही सही समय होता है। जब कुएं में पानी, जल तालाब में पानी, जब वर्षा हो रही है, जब नल जो है वो पानी से आसानी से मिल रहे हैं, उसी समय हमें उसके महत्व को समझना चाहिए। संकट के समय पानी की कीमत समझना आसान है, लेकिन समझदारी ये है कि संकट आने से पहले ही तैयारी कर ली जाए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हम बातें कर रहे हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हम हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही थी, जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, इस विषय पर हम बातचीत कर रहे थे। यही अगर बात करें अंजलि जी, तो हम कह सकते हैं साथियों कि घरों और संस्थानों में उचित वर्षा जल निकासी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इस पानी को फिर उपयोगी बनाने में ये चीजें मदद कर सकती है। साथ ही जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण और कचरा बड़ी समस्या बन सकते हैं। ऐसे में तालाब, झील, नाले और अन्य प्राकृतिक जल निकासी क्षेत्रों को सुरक्षित रखना काफी जरूरी है, ताकि बारिश का पानी अपना प्राकृतिक रास्ता पा सके। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, इसलिए हमें आज से पानी को लेकर अपने घर में एक छोटा बदलाव जरूर करना है। एक ऐसा नियम बनाना है जिसे परिवार का हर सदस्य निभाए। बच्चे नल खुला न छोड़े, बड़े लीकेज को तुरंत ठीक करवाएं, खेत में पानी जरूरत के अनुसार दिया जाए। बारिश के पानी को रोकने के बजाय किए जाने वाले जो प्रयास है वो हमें करने हैं। गाँव के जल स्रोतों को किसी की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी माना जाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: कभी कभी श्रोता साथियों, हम सोचते हैं कि हमारे अकेले के पानी बचाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। अगर हर व्यक्ति यही सोचकर जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तो बदलाव कभी शुरू नहीं होगा। अगर हर व्यक्ति यह सोच ले कि शुरुआत मैं अपने घर से करूंगा, तो वही छोटी शुरुआत धीरे धीरे पूरे समुदाय की आदत बन सकती है। याद रखिए श्रोता साथियों कि पानी को बचाने के लिए हमेशा कोई बड़ा अभियान जरूरी नहीं है।
0: कई
1: बार एक बंद किया हुआ नल, एक सुधारी हुई पाइपलाइन, खेत की मजबूत मेड़, साफ किया हुआ कुआ, बचाया गया वर्षा का जल और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय भी बहुत मायने रखता है। पानी की कहानी केवल आज की प्यास तक सीमित नहीं है, ये आने वाले कल की खेती, पशुधन, पेड़ पौधों, घरों और पूरे गांव से जुड़ी हुई है। इसलिए हर बार पानी इस्तेमाल करते हुए खुद से एक सवाल पूछें, मैं संसाधन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ या इसे व्यर्थ जाने देना जरूरी है। अगर यह सवाल हमारी रोजमर्रा की आदत बन जाए तो जल संरक्षण किसी किताब का विषय नहीं रहेगा, वह हमारे व्यवहार में दिखाई देगा। पानी को लेकर किसी बड़े बदलाव का इंतजार न करें, अपने घर से शुरुआत करें, पानी गली तक पहुंचाएं, अपने गांव से जोड़े और अपनी आने वाली पीढ़ियों तक यह जिम्मेदारी पहुंचाएं।
0: जी हाँ,
1: धरती हमें पानी विरासत में नहीं देती कि हम उसे मनमाने ढंग से खर्च करते, यह हमारे पास प्रकृति की अमानत है और अमानत का सम्मान यहीं से शुरू होता है कि हम उसकी सुरक्षा के लिए किस तरीके से प्रयास करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो ऐसे में यही कहना जरूरी है कि जल संरक्षण केवल एक अभियान या सरकारी योजना का विषय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और भविष्य से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है साथियों।
1: बिल्कुल।
0: पानी की हर बूंद प्रकृति का अनमोल उपहार है और इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारा कर्तव्य। यदि हम आज पानी की बर्बादी को रोकेंगे, वर्षा जल संचयन को करेंगे और भूजल के स्तर को बनाए रखने का प्रयास करेंगे साथियों, और अपने जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाएंगे अंजलि जी, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रखा जा सकता है। हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि पानी की कमी का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि पानी बचाने की शुरुआत आज से और अपने घर से करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: हर बूंद का रखे हिसाब, जल संरक्षण बने सबकी जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल।
0: आज पानी बचाएंगे तभी सुरक्षित होगा हमारा कल।
1: जी हाँ, तो बातें ढेर सारी हो गई है, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे, ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार साथी। दोस्तों आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड थकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत करना चाहूंगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ रोज़ाना सोमवार से शनिवार बना रहता है, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में शुरू हो चुका है, तो मैं पहले बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, पहली फरमाइश हमारे बीच आइए छत्तीसगढ़ कोरबा से। फिल्म का नाम है अर्पण, गीत के बोल हैं लिखने वाले ने लिख डाले। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ कोरबा से, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानो शानो, बबन मुनहू, काना ठाकुर, हरिप्रिया जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी, रोहिदास टोक पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं कोपर गांव से, सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े, श्रद्धा मालोड़े, मानसी मालोड़े। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिना नास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान, आसिफ अली खान। बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह बजापन, मुनीश देवी, अर्जुन अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी जी, सुधर नूतन, रामनंद कश्यप जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। इंदौर से जुड़ना चाह रहे हैं वंदना मराठा, पूप भाव और पूजा रेखा रघुवंशी, ललिता जगदीश चौहान जी, चंदा युवराज, वानखेड़े, लक्ष्मी नारायण भाव, खड़से जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं लिखने वाले ने लिख डाले। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है रघुवीर नगर से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी, दिलवाले गीत के बोल हैं, जीता था जिसके लिए मरता था। फरमाइश करता जुड़ना चाहे रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलियाज नायब, लड्डू जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। पद्मा टॉकिज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, रजन शाह, सुषमा कपूर जी। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक जी। जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकर्ण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र, मंद्रहन वर्मा जी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी गोस्वामी, दिशा गोस्वामी जी। इंदौर मध्य प्रदेश से हैं वंदना नगर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयागराज चौधरी जी, लड्डू देविका चौधरी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, जीता था जिसके लिए मरता था। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही बड़ा सा गीत था, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया, गीत के बोल हैं हवा हवाई। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गाजीबाद से हैं शिशपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। गंजुडवारा से शमशल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनूप खान, उमान अंसारी जी। संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल्लाह, अब्दुल रहमान डावर, कादर डावर, हमजा डावर। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। मधुबनी बिहार से शबे बरवाना, जाहिद अली, शाहिद अली जी और शाहिद अली जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं हवा हवाई। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रद्धा साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रद्धा साथियों अमर अकबर एंथनी। गीत के बोल हैं पर्दा है पर्दा। इस गीत को आवाज़ दी है, आपको बताना चाहूँगी, मोहम्मद रफ़ी जी ने। और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश और प्रशांत हेमंत प्रजापति जी। सरगोजा से है रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम रजवाड़े जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पाटापरा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। जफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राजे यादव, जगुताई राजे यादव, संचित वयाल, प्रथमी सर्वत, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पर्दा है पर्दा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

तेरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है सिरसा हांडी खेड़ा से। फिल्म का नाम है मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों वीरजारा। गीत के बोल हैं आया तेरे दर पर दीवाना। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक, सचिन शर्मा, रोहित शर्मा जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं पीरा बाजार जुमे तलैया से। अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, तुस्सी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देव शो, जयप्रकाश साहु, वसंतलाल साहु, हीरा मोती, पन्नालाल साहु। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद, पीयूष कुमार जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं चंद्रलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहु, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आया तेरे दर पर दीवाना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों लूटमार। गीत के बोल हैं, जब छाए मेरा जादू। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दिनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, विदई जोशी, जोधपुर श्रीरामपुर राजस्थान से हैं। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार जोधपुर राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं। राहुल मनवर, अमीशा मनवर, साहिल मनवर और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं। अनिल कुमार गोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता गोड़के, वैष्णवी गोड़के, ये मेरठ से जुड़ रहे हैं। और भी श्रोता साथी हैं जो मेरठ से जुड़ रहे हैं, अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, जब छाए मेरा जादू। तो कहा बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है पंढरपुर टी सिटी से। फिल्म का नाम है फूल और कांटे। गीत के बोल हैं, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, शिंदे कृष्णा घोड़के जी और भी हमारे दोस्त जो इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं खेल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडकुल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, डिकेस्ट्रो पल डिकेस्ट्रो, वेस डिकेस्ट्रो जी, परारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी, हिमांश जी, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जोधपुर से जाखुद राजस्थान से शंभुदार खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनीलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मैंने प्यार तुम ही से किया है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक बार फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश जो है 11 से 1 बजे तक चलता है। इसी बीच आप आपकी फरमाइशों के गीतों को सुन सकते हैं हमारे वागर रेडियो 90.8 FM के माध्यम से। और अगर आप भी इन गीतों को हमें भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा फ़ोन नंबर लिख लीजिए। इसके माध्यम से आप गीत के बोल, फिल्म का नाम और आप कहाँ से हैं, कौन कौन इस गाने को सुनना चाह रहा है, वो नाम सभी लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो इसके लिए आप लिख लीजिए हमारा नंबर। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है अम्रपाली, गीत के बोल है तुझे याद करते करते। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता है इस गीत की, नवाशहर से है गगनदीप थांदी, तृप्ता थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रीमियम और वामिका वाणी थांदी। अनुरोध करता है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबी राही, मेरा जहां, हरिद्वार उत्तराखंड से है ये। मिलाड़ा राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। भिवानी से है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। लोहारा से है डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, गीत के बोल है तुझे याद करते करते।

साथियों, अभी हमने लता मंगेशकर जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है, गीत की भूल है प्यार की कश्ती में। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। फरमाइश करता है इस गीत की दुलापुर उत्तर प्रदेश से है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी रिति, बलवीर सिंह और भी दोस्त हैं जो सुनना चाह रहे हैं। कुलगांव से है पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुंभार। इसी के साथ जुड़ रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना गोडाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शिंदे और प्रतिभा गोडाने। मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से है मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून। तो आइए साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है प्यार की कश्ती में।

साथियों अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है एक विलन। गीत के बोल है जरूरी था, इस गीत को आवाज दी है मुस्ताफ खाजिब ने। फरमाइश करता है इस गीत के अकूट से हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबे राव। गोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। मुंगी पेठर महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब सरखबाई, परमेश श्रावणी और कड़नकर परिवार के सभी सदस्य। नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस निर्मला विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इंग्ले, सोपान तायडे और आशीष। कलारून से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं। येराला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। पतरोड से विजय अम्बाटकर, सुनीता अम्बाटकर, अक्षय अम्बाटकर, राधिका अम्बाटकर और ऋषिकेश अम्बाटकर। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश, किस गीत को गीत के बोल है जरूरत।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसे भी अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल है तेरा चेहरा, टाइटल सॉन्ग है। श्रोता साथियों, फरमाइश करता है इस गीत के कुरावली से है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, और भी दोस्त हैं। पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक वंश बत्ता। सरदना मेरठ से हैं संयम जैन, अनिल जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन, सरथना मेरठ से ही हैं आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन। अनुरोध करता है इस गीत के। नांदुरा से हैं संतोष उशानी, उषा वसानी, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक। नासिक से हैं विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण गवली और भक्ति गवली। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में। शिवाजी चौक कटनी से हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रंजन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना मोना, हनी, यश, सौम्या। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल है तेरा चेहरा।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल है ए दिल है मुश्किल, फरमाइश करता है इस गीत की फाजिलका पंजाब से है सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। पोटिया कला दुर्ग से है संजय कुमार शाहू, सुजाता शाहू, शशांक शाहू और सीमा शाहू। महाराष्ट्र से है मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी और मायरा सुरोशी। सहारनपुर से है सैयद मसरून, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाव। अमरावती महाराष्ट्र से है हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्य। गिरडी झारखंड से है मोहम्मद यासिन अंजाना, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिजरा नवाज, बेबी चाहत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल है ए दिल है मुश्किल।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है गैंगस्टर, गीत के बोल है तू ही मेरी शब है। फरमाइश करता है इस गीत की हरियाणा झज्जर से है बीटू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। दांडीगाम गुजरात से है प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश चोरी। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, मुरादाबाद से है ये। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं साथियों। सरगांव छत्तीसगढ़ से है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांश वर्मा। नेहरू चौक पेठर से है डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव, बीबी सिया यादव। जलाना शहर से है सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकनाथ यादव और संगीता यादव। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवन शिवास, श्रीमती करुणा शिवास, आयुषी शिवास, विवेक शिवास, बेबी आयुषी शिवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनीता राज, सोमू, सुमित, मानस राज। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल है तू ही मेरी शब है।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश का गीत आया है, सैयारा। टाइटल सॉन्ग है श्रोता साथियों, फरमाइश करता है इस गीत की धनूरी तेलीवाला से है निशार सलमानी, नुशा सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं। अकुला से है सुशीला देवी मंदूरकर, सतानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से है रामशरण विश्वकर्मा, शाहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छनुलाल शिवास, रंजन शाहू, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं ये। धनजुड़ारा उत्तर प्रदेश से है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम राना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव। महाराष्ट्र से है किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर। छनुलाल शिवास, अनीता पुष्पा शिवास। जराफाबाद से है श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव, सचिन प्रथमेश, सर्वत हर्षिता, सानवी और प्रणाली देशमुख। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

फरमाइश करता है इस गीत की। छत्तीसगढ़ से हैं प्रिया, कला और विनीता। कलकत्ता से हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिमी, तनुश्री गुप्ता। तिलैया से हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी शाहू, रिया जिया, टिशु आयुषी, अनिरुद्ध बापू, मुन्नी देवी शाव, जयप्रकाश शाव, बसंतलाल शाव, हीरा मोती, पन्नालाल शाव। और भी दोस्त हैं। आगरा से हैं श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर अबीर। कानपुर से हैं श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू दिया चौरसिया। महाराष्ट्र से नंदकिशोर कट्टी, संगीता कट्टी, साक्षी, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, जयश्री महतरी, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, पीपी कुलथे। जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित हुजा। और भी दोस्त हैं श्रोता साथियों जो जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में। अमरावती से है श्याम कीटे, वंदना कीटे, भाविका कीटे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30

पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारी रेडियो साथी कशिश पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमा। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपने

0: समस्या नु समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मालूम जावु है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़ वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपना भी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह।
1: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है कि हमारी डिजिटल संगत कैसी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश कि हम अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, परिवार वालों के साथ रहते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं और काम करते हैं, लेकिन आज हमारी एक ऐसी संगत भी बन गई है जिसके बारे में शायद हम रोज सोचते ही नहीं, और वो है हमारी डिजिटल संगत। साथियों, हमारा मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन गेम्स, चैटिंग, शॉर्ट वीडियो और इंटरनेट पर मिलने वाली अलग अलग तरह की सामग्री, ये सारी चीजें मिलकर हमारी डिजिटल दुनिया बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जरा खुद से पूछिए श्रोताओं कि जब आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो आपके पास कैसी बातें होती हैं? क्या आप क्या देखते हैं, किसे सुनते हैं, किस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं, और सबसे जरूरी बात कि इन सब का असर आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीकों पर कैसे पड़ रहा है।
0: बिल्कुल जागृति जी,
1: क्योंकि जैसे हमारे आसपास रहने वाले लोगों की संगत हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है कशिश, वैसे ही हमारी डिजिटल संगत भी हमारी सोच, आदत और नजरिए को प्रभावित कर सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे दोस्तों को हम प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमारी डिजिटल संगत कैसी है। दोस्तों, अगर बात करें कि डिजिटल संगत होती क्या है, तो संगत का मतलब केवल हमारे साथ बैठने वाले दोस्त या हमारे आसपास रहने वाले लोग नहीं होते। जागृति, आज के डिजिटल समय में संगत का एक बड़ा हिस्सा हमारी स्क्रीन के अंदर भी मौजूद है।
1: बिल्कुल,
0: हम श्रोता साथियों सोशल मीडिया पर जिन लोगों को फॉलो करते हैं, जिनकी वीडियो देखते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं और जिन पोस्ट पर बार बार रुकते हैं, जिन विचारों को लाइक और शेयर करते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में हमारे डिजिटल संगत का हिस्सा बन जाते हैं। मान लीजिए कि कोई युवा रोज ऐसे वीडियो देखता है जिनमें पढ़ाई, करियर, कौशल, किताबें, विज्ञान, खेल, कला या प्रेरणादायक बातें होती हैं।
1: जी हाँ,
0: तो धीरे धीरे उसका ध्यान भी इन चीजों की तरफ बढ़ने लगेगा। जागृति जी, वहीं अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मकता, अफवाह, अपमानजनक सामग्री, बेकार की बहस या घंटों तक बिना उद्देश्य की वीडियो देखने में समय बिताता है, तो उसकी डिजिटल आदतें उसके समय और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए श्रोता साथियों, सवाल ये नहीं है कि हम डिजिटल दुनिया में हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम डिजिटल दुनिया में किस तरह की संगत को चुन रहे हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा अवस्था जीवन का वो समय है जब व्यक्ति अपनी पहचान, विचार और भविष्य को आकार देता है। इस उम्र में हम बहुत कुछ सीखते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं और अपने सपनों को लेकर सोचते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इंटरनेट इस सीखने की प्रक्रिया में बहुत मददगार हो सकता है। आज हम देखते हैं कि कोई युवा अपने छोटे से गांव या कस्बे में बैठकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में जान सकता है। वो नई भाषा को सीख सकता है, किसी विषय की जानकारी ले सकता है, कोई हुनर सीख सकता है और अपने करियर के लिए नए रास्ते को भी समझ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन साथ ही इंटरनेट पर उपलब्ध हर चीज हमारे लिए उपयोगी हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें अपनी डिजिटल संगत को लेकर उतना ही सजग रहना होगा जितना हम वास्तविक जीवन में दोस्तों का चुनाव करते समय रहते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही दोस्तों, अगर हमारे डिजिटल दुनिया में ऐसे लोग हैं और सामग्रियां हैं जो हमें सीखने, मेहनत करने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है, तो इंटरनेट हमारे लिए एक शानदार अवसर बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी, आज के युवा ऑनलाइन नई स्किल सीख सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, भाषाएं सीख सकते हैं, किताबों और ज्ञानवर्धक सामग्री तक पहुंच बना सकते हैं। साथ ही साथ खेती और रोजगार की नई तकनीकें भी जान सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से ही। छोटे व्यवसाय शुरू करने के तरीके सीख सकते हैं, कला, संगीत या रचनात्मकता को आगे बढ़ा सकते हैं। देश दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी श्रोता साथियों हम इंटरनेट के माध्यम से ही ले सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि सही डिजिटल संगत हमें उपभोक्ता से निर्माता भी बना सकती है। सिर्फ दूसरों का कंटेंट देखने के बजाय अगर हम कुछ सीखें, बनाएं और साझा करें, तो डिजिटल दुनिया हमारे विकास का एक माध्यम बन सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली वो हर चीज वास्तविक नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन का सिर्फ वही हिस्सा दिखाते हैं जो अच्छा लगता है। जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को यही बात करते हैं, हमें उनकी सफलता दिखाई देती है लेकिन उनके संघर्ष नहीं दिखाई देते, हमें उनकी उपलब्धियां दिखाई देती है लेकिन उनके पीछे एक मेहनत नहीं दिखाई देती है। ऐसे में युवा अनजाने में अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की सोशल मीडिया वाली तस्वीर से करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए श्रोताओं, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती। किसी को एक फोटो, एक वीडियो या कुछ सेकंड की रील उसके पूरे जीवन की कहानी नहीं बता सकती है।
0: जी जी,
1: इसलिए डिजिटल दुनिया को देख कर अपने जीवन की कीमत तय करना सही नहीं है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
2: लंबा सफर है हमको क्या डर है, हंसते हंसते कट जाएगा।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि हमारी डिजिटल संगत कैसी होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना था कि आखिर डिजिटल संगत है क्या, ये भी जाना था कि डिजिटल संगत हमारी सोच को किस तरह से प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल,
0: अच्छी डिजिटल संगत हमें आगे किस तरह से बढ़ा सकती है। साथ ही हम जानते हैं कि हर चमकती चीज सच नहीं होती।
1: बिल्कुल जागृति जी, यानी कि युवा साथियों, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर चीज वास्तविक नहीं होती। कई बार लोग अपने जीवन का सिर्फ वही हिस्सा दिखाते हैं जो अच्छा लगता है। हमें उनकी सफलता दिखाई देती है लेकिन उनके संघर्ष नहीं। हमें उनकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं लेकिन उनके पीछे की मेहनत नहीं देखते हम जागृति
0: जी। हाँ,
1: ऐसे में हमारे युवा अनजाने में अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की सोशल मीडिया वाली तस्वीर से करने लगते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, याद रखिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं होती। किसी की एक फोटो, एक वीडियो या कुछ सेकंड की रील उनके पूरे जीवन की कहानी नहीं बता सकती। इसलिए डिजिटल दुनिया को देखकर अपने जीवन की कीमत तय करना सही नहीं है।
0: जी हाँ कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, क्या आपने कभी मोबाइल सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाया और देखते देखते आधा घंटा, एक घंटा निकल गया? ऐसे बहुत लोगों के साथ हमेशा होता है।
1: बिल्कुल,
0: एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा समय कहाँ चला गया। युवाओं को कहना चाहेंगे कि जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई, काम, परिवार, दोस्ती, आराम, खेल और अपने लक्ष्य, हर चीज के लिए समय होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारा बहुत सारा समय बिना उद्देश्य के स्क्रीन पर चला जाता है तो हमारे पास उन चीजों के लिए कम समय बचता है जो वास्तव में हमारे भविष्य के लिए जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए खुद से पूछिए श्रोताओं कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ या मोबाइल मुझे चला रहा है। ये छोटा सा सवाल हमारी डिजिटल आदतों को समझने में बहुत मदद कर सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथी युवा साथियों, आपके फीड आपके विचारों की खिड़की है। जैसे कि सोशल मीडिया पर हमें बार बार उसी तरह की सामग्री दिखाई देने लगती है जिस पर हम रुकते हैं, देखते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं। जागृति
0: जी हाँ,
1: इसलिए साथियों, कभी अपने सोशल मीडिया फीड को ध्यान से देखिए। क्या उसमें ज्ञान है, क्या उसमें रचनात्मकता है, क्या उसमें प्रेरणा है साथियों, क्या उसमें सीखने वाली कुछ बातें हैं या सिर्फ ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर आपका समय बीत जाता है। अगर आपको लगे कि आपकी फीड बहुत ज्यादा नकारात्मक या अनुपयोगी सामग्री की है तो अपने डिजिटल संगत को बदलना आज से ही आप शुरू कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: कुछ ऐसे अकाउंट और चैनल को चुनिए जिनसे आपको वास्तव में कुछ सीखने को मिले।
0: जी हाँ कशिश, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम वास्तविक जीवन में हर व्यक्ति से दोस्ती नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार हमें परेशान करता है या गलत दिशा में ले जाता है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल दुनिया में यही सोच लागू होती है। अगर कोई अकाउंट हमें बार बार परेशान करता है, गलत जानकारी फैलाता है या हमें नकारात्मक महसूस कराता है तो जरूरी नहीं श्रोताओं कि हम उसे फॉलो करते रहें। हम उसे अनफॉलो, म्यूट या ब्लॉक जैसे विकल्पों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये किसी के खिलाफ होना नहीं है, ये हमारे डिजिटल वातावरण को स्वच्छ रखने का एक तरीका है।
1: बिल्कुल, जैसे कि दोस्तों आज हम देखते हैं कि कोई वीडियो वायरल है तो कोई मीम ट्रेंड कर रही है, कोई चैलेंज लोकप्रिय है या कोई बात हर जगह दिखाई दे रही है जागृति जी। लेकिन सिर्फ इसलिए दोस्तों कि कोई चीज लोकप्रिय है इसका मतलब ये नहीं है कि सही, उपयोगी या आपके लिए जरूरी भी है। युवाओं को किसी भी वायरल सामग्री को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा रुककर सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कि क्या ये सच है, क्या ये उनके लिए उपयोगी है, क्या इसे शेयर करना उनके लिए उचित होगा या क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। दोस्तों, डिजिटल जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ खुद ही सही सामग्री देखना नहीं होता बल्कि गलत या भ्रामक सामग्री को आगे फैलाने से बचना भी है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि संगत का मतलब केवल लोगों से है लेकिन डिजिटल दुनिया में हमारी संगत कुछ आदतों से भी बनती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि रात को देर रात तक फोन चलाना, हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन चेक करना, बिना

0: के फोन उठाना, खाली समय मिलते ही रील्स देखना, हर चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करना और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। अगर ये आदतें हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने लगे तो हमें रुक कर सोचना होगा। हम देखते हैं कि मोबाइल जरूरी है, इंटरनेट जरूरी है और सोशल मीडिया भी आज के समय का हिस्सा बन गया है कशिश, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें अपने परिवार वालों से बात करनी होगी, दोस्तों के साथ बैठना होगा, बाहर खेलना होगा, किताबें पढ़नी होगी, प्रकृति के साथ समय बिताना होगा, अपने शौकों को पूरा करना होगा और अपने आसपास के लोगों की मदद करना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी फोन को एक तरफ रख कर अपने आसपास की दुनिया को देखिए श्रोताओं, हो सकता है कि जिस खुशी को हम स्क्रीन पर ढूंढ रहे हैं वो हमारे बिल्कुल पास बैठी हो।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि अच्छे डिजिटल संगत का मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो ही देखने हैं साथियों।
0: बिल्कुल,
1: डिजिटल दुनिया में मनोरंजन भी जरूरी है। संगीत, फिल्में, खेल, कॉमेडी और रचनात्मक सामग्री भी जीवन का एक हिस्सा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम संतुलन रखें। आप श्रोता साथियों अपने लिए एक छोटा सा डिजिटल नियम बना सकते हैं, जैसे कि जो मुझे सिखाए मैं उसे जगह दूंगा।
0: जी हाँ।
1: जो मुझे प्रेरित करे मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। जो मुझे बेवजह परेशान करे मैं उससे दूरी बनाऊंगी। जो गलत जानकारी दे उसे बिना जांचे शेयर नहीं करूंगा। और सबसे जरूरी ये कि मोबाइल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, पूरी जिंदगी नहीं।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के बाद आपको एक छोटा सा काम जरूर करना है और वो ये है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खोलेंगे, देखेंगे कि आप किन लोगों को और किन पेज को फॉलो करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: फिर खुद से आप ये पूछिए कि क्या ये मेरी सोच को बेहतर बना रहा है, क्या मैं इनसे कुछ सीख पा रहा हूँ, क्या इनकी वजह से मेरा समय बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। श्रोता साथियों जो चीजें आपको सीखने, सोचने और आगे बढ़ने के लिए मदद करती है उन्हें अपने डिजिटल दुनिया में आप जगह दीजिए।
0: जी हाँ।
1: और जो चीजें सिर्फ आपका समय ले रही है उनसे थोड़ा अंतर बनाइए, क्योंकि जागृति जी हमारी डिजिटल फीड सिर्फ हमारी स्क्रीन नहीं बनाती, वह धीरे धीरे हमारे विचारों का वातावरण भी बनाती है।
0: बिल्कुल कशिश, और हमारे श्रोता साथियों के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज डिजिटल दुनिया हमारे जीवन से अलग नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट ने हमारे सामने सीखने और आगे बढ़ने के अनगिनत अवसर खोल दिए हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हर अवसर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जिस तरह हम कहते हैं कि जैसी संगति वैसी रंगत, उसी तरह आज के समय में ये बात हमारी डिजिटल जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हमारी डिजिटल संगत ज्ञान, रचनात्मकता, मेहनत, सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों से भरी है तो वो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे हर चीज को अपनी डिजिटल दुनिया का हिस्सा बना लेंगे तो हमारा समय, ध्यान और सोच प्रभावित हो सकती है।
1: हाँ।
0: इसलिए आज से अपने मोबाइल की स्क्रीन को सिर्फ मनोरंजन का साधन मत समझिए, उसे सीखने, जुड़ने, आगे बढ़ने और अपनी आवाज को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम बनाइए।
1: बिल्कुल।
0: और हाँ, कभी कभी मोबाइल को नीचे रखकर अपने आसपास की दुनिया को भी जरूर देखिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, जिंदगी हमारे आसपास भी है।
1: बिल्कुल।
0: संगत वही चुनिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाए, चाहे वो संगत आपके पास बैठी हो या आपकी मोबाइल स्क्रीन के उस पार। और याद रखिए श्रोताओ, डिजिटल दुनिया बड़ी है लेकिन आपकी सोच उससे भी बड़ी है।
1: जी हाँ।
0: फैसला कीजिए श्रोता साथियों की स्क्रीन हमें चलाएगी या हमारी समझ स्क्रीन को।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी रही और हम जान पाए कि हमारी डिजिटल संगत किस प्रकार से रहनी चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने मोबाइल को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे जागृति जी, लेकिन जाने से पहले क्यों ना दोस्तों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवाएं।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फॉग रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं किशोरियों का पोषण, स्वस्थ बेटी सशक्त भविष्य को लेकर। जी हां, पोषण की बात केवल छोटे बच्चों तक सीमित नहीं है। किशोरावस्था जीवन का वो पड़ाव है जब शरीर में तेजी से बदलाव होता है और भविष्य के स्वस्थ जीवन की नींव तैयार होती है। इस उम्र में शरीर को बढ़ने, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास, पढ़ाई, खेलकूद और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए पर्याप्त पोषक तत्व की जरूरत होती है। खासकर किशोरावस्था के लिए पोषण का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मासिक धर्म की शुरुआत में शरीर में आयरन की कमी भी हो जाती है। खान पान में लापरवाही, भोजन छोड़ना, बिना सलाह की डाइटिंग करना या पौष्टिक भोजन की कमी आगे चलकर कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा बागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं किशोरियों का पोषण, स्वस्थ बेटी, सशक्त भविष्य को लेकर। तो श्रोता साथियों, आज हमारी बातचीत रहने वाली है किशोरियों के सही पोषण, आयरन, फोलिक एसिड, मासिक धर्म के दौरान खान पान, खेल, व्यायाम, परिवार और स्कूल की भूमिका क्या है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं किशोरी का पोषण केवल आज की सेहत नहीं बल्कि आने वाले स्वस्थ जीवन की तैयारी भी है। फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार अंजलि।
0: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: मैं रेडियो से धन्यवाद करती हूँ अंजलि।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है किशोरावस्था में पोषण क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरीके से किशोरी जो बालिकाएं हैं उन्हें खाने पीने की चीजों को लेकर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहीं आप सबसे पहले हम यही बताइए कि किशोरावस्था में पोषण सबसे महत्वपूर्ण आखिरकार क्यों है।
1: हाँ अंजलि, किशोरावस्था आयु वर्ग का ऐसा दौर है जिसमें पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो इसमें अगर अपन देखें तो इस महत्वपूर्ण चरण में शरीर और मस्तिष्क दोनों का तेजी से विकास होता है।
0: बिल्कुल।
1: लंबाई और वजन भी बढ़ता है, साथ साथ हड्डियां, मांसपेशियां और प्रजनन अंगों का भी विकास होता है। और इसमें किशोरियों की अगर बात करें तो उनका मासिक धर्म भी शुरू होने लगता है और इस वजह से अगर ध्यान ना दिया जाए तो आयरन की कमी भी होने लगती है क्योंकि आयरन की आवश्यकता शरीर के लिए बढ़ जाती है। इसलिए इस उम्र में पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: अगर इस समय पोषण की कमी रह जाए तो एनीमिया, कमजोरी, थकान, बार बार बीमार पड़ना, पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ता है। और वहीं सही पोषण किशोरी को स्वस्थ रहने, आत्मविश्वास बढ़ाने और आगे चलकर स्वस्थ मातृत्व के लिए भी तैयार हो

0: मदद करता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने बताया कि किशोरावस्था में पोषण क्यों महत्वपूर्ण है, और यही आपने बताया था कि किस तरीके से अगर पोषण की कमी होती है तो महिलाओं में एनीमिया की समस्या हो जाती है। तो किशोरावस्था में एनीमिया इतना आम क्यों है?
0: किशोरियों में एनीमिया का मतलब अगर हम समझे तो खून की कमी के कई कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि किशोरावस्था में शरीर का तेजी से विकास होता है, इसलिए इस उम्र में आयरन की जरूरत बढ़ जाती है, और वहीं किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत होती है जिसे वो समझ भी नहीं पाती है ठीक से, और हर महीने रक्तस्राव के कारण शरीर से आयरन की कुछ मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में अगर भोजन में आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की कमी रहेगी और भोजन की विविधता में कमी होगी तो एनीमिया दिन ब दिन कम होता ही चला जाएगा, और उसकी वजह से फिर शरीर में कई तरह की चीजों को किशोरियों को सामना करते रहना पड़ेगा।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बता रही हैं कि किस तरीके से किशोरावस्था में एनीमिया जो है वो बहुत ही आम है, यही आयरन और फोलिक एसिड की गोली क्यों दी जाती है?
0: आयरन और फोलिक एसिड की गोली किशोरियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है।
1: बिल्कुल,
0: किशोरावस्था में शरीर तेजी से क्योंकि विकास कर रहा होता है, और मासिक धर्म का भी कारण जैसे कि अपन ने बात की जिसकी वजह से आयरन की जरूरत बढ़ जाती है, तो इसकी कमी से एनीमिया, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, एकाग्रता में भी कमी होने लगती है। और दूसरी ओर अगर अपन फॉलिक एसिड की बात करें तो जो फॉलिक एसिड है वो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण और शरीर की वृद्धि में सहायक होता है।
1: बिल्कुल,
0: और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आयरन और फॉलिक एसिड हमेशा साथ में दिए जाते हैं ताकि एनीमिया की रोकथाम और किशोरियों की बेहतर विकास में मदद मिल सके। अगर मैं सरल शब्दों में बात करूँ ना अंजलि, तो ये है कि आयरन शरीर में खून बनाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल,
0: और फॉलिक एसिड जो है वो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग करता है, इसलिए किशोरियों को आईएसए की गोली नियमित रूप से लेना महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था में हर जो लड़की होती है वो हर महीने मासिक धर्म से गुजरती है, तो मासिक धर्म के दौरान खान पान की चीजों का हमें कैसे ध्यान रखने की जरूरत है?
0: हाँ, ये अगर हम खान पान से जोड़ के देखें तो खान पान अगर हमारा अच्छा हो, पौष्टिक हो, पौष्टिक आहार अगर हम ले रहे हैं किशोरावस्था में, तो ये एनीमिया और आयरन की कमी से हमें बचा सकता है। जैसे कि भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चने, राजमा, बाजरा और मोटे अनाज, और उसके साथ साथ में तिल, मूंगफली, गुड़, अंडे भी मांसाहारी पदार्थ लेने वाले ले सकते हैं, और साथ में आयरन वाला भोजन अगर हम देखें तो उसके साथ में नींबू, आंवला, अमरूद और अन्य जो विटामिन सी युक्त फल सब्जियां होती है वो लेने से शरीर को आयरन अवशोषित करने में मदद मिलती है। तो स्थानीय स्तर पे जो भी हमको विटामिन सी से मिलने वाली जो चीजें हैं वो हम भरपूर तरीके से अपने खाने में, खान पान में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान हमें पानी खूब पीना चाहिए, पर्याप्त पानी अगर हमको नहीं मिलता है ना तो हम कितना भी संतुलित भोजन कर लें कोई फायदा नहीं है उससे। तो केवल मासिक धर्म के कारण भोजन कम करना या किसी पौष्टिक भोजन को अनावश्यक रूप से छोड़ना सही नहीं है, और चाय कॉफी को भोजन के तुरंत बाद लेने से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि इससे आयरन के अवशोषण पर गलत असर पड़ता है।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो क्या किशोरावस्था में डाइटिंग करना सही है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी जो लड़कियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि मेरा वजन ज्यादा न बढ़ जाए, मेरे जो शरीर का आकार है वो इधर उधर गड़बड़ा न जाए, उसके चक्कर में वो डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं। तो क्या डाइटिंग करना सही है?
0: किशोरावस्था में बिना विशेषज्ञ की सलाह के डाइटिंग करना सही नहीं माना जाता। देखो, इस उम्र में क्या होता है, अपन ने बात की कि शरीर और मस्तिष्क जो है हमारा तेजी से विकास कर रहा होता है, तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब वजन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? भोजन छोड़ना पड़ता है, बहुत कम खाना खाया जाता है, या कोई एक खाद्य समूह ऐसा भी होता है जिसको वो बंद कर देते हैं। भोजन में शामिल करते ही नहीं है।
1: नहीं।
0: तो पोषण की कमी, कमजोरी और एनीमिया ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से शरीर के विकास पर एक विपरीत प्रभाव देखा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर किसी किशोरी को वजन अधिक या कम है और उसे खुद अगर वो चाहती है कि डाइटिंग करे तो वो खुद से शुरू नहीं करे, इसकी बजाय वो डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी सलाह ले और उनकी सलाह के अनुसार ही वो लक्ष्य भोजन कम करना उसके लिए ठीक रहेगा और नियमित शारीरिक गतिविधि और अपनी दिनचर्या का हिस्सा उन चीजों को बनाना होगा।
1: बिल्कुल मैम। तो यही मैम अब मैं जानना चाहूंगी कि किशोरियों को एक दिन में क्या क्या खाना चाहिए।
0: देखो अंजलि, अगर अपन अपने आदिवासी क्षेत्र की बात करें ना किशोरियों के लिए, तो सोचने की बात और समझने की चीज सिर्फ इतनी सी है कि जो पौष्टिक भोजन होता है ना वो महंगा नहीं होता है, महंगा होना जरूरी भी नहीं होता है। ये सब हमारे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मक्का होता है, ज्वार है, आले, चना, मूंगफली, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, कंद, मूल, ये इस तरह के पदार्थ हैं कि हमारे जो किसान भाई बहने हैं इनके घरों में, खेतों में ये आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें हैं। इसी तरह से हमारे सभी किसान भाई बहनों के यहाँ पे पशुधन बहुत अच्छे से मिलता है, कोई परिवार ऐसा नहीं है जहाँ पे पशुधन नहीं मिलेगा। क्योंकि पशुधन की उपलब्धता होती है तो वो दूध, दही, छाछ और अंडा भी लिया जा सकता है, है ना। सबसे जरूरी है कि किशोरी दिन में पर्याप्त और विविध प्रकार का भोजन करे।
1: बिल्कुल।
0: और इससे भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अगर हम समझे तो ये है कि सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए और परिवार में उसे पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन मिलना भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें बता रही है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि किशोरावस्था में खेल और व्यायाम का क्या महत्व है।
0: खेल और व्यायाम तो बहुत बार हम अलग रखते हैं, बच्चों को घर के कामों में उलझाए हुए रखते हैं, तो हमें इसका भी महत्व समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए ना। तो क्योंकि किशोरियों का व्यायाम और खेल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को तो मजबूत करता ही है, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इससे शरीर तो मजबूत रहता है, हड्डियां और मांसपेशियों का भी अच्छा विकास होता है और तनाव कम होता है। इसलिए किशोरियों को रोज कुछ समय खेलना, दौड़ना, चलना या अपने पसंद की शारीरिक गतिविधि के लिए समय जरूर देना चाहिए। और मासिक धर्म के दौरान भी यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो हल्की सामान्य गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आप बहुत अच्छी बातें हमें बता रही हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि किशोरावस्था में पोषण को लेकर आज जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें माता पिता की क्या भूमिका है और स्कूल की क्या भूमिका है।
0: तो माता पिता और स्कूल की जैसे आप बात कर रहे हो अंजलि, इनकी सब की भूमिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? जैसे माता और पिता जो होते हैं वो एक आधार होता है बच्ची के जीवन का, तो माता पिता को किशोरी के भोजन, स्वास्थ्य और भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। उसे पर्याप्त और पौष्टिक भोजन दें, खासकर आयरन और प्रोटीन वाले स्थानीय खाद्य पदार्थ से भरपूर उसकी भोजन की थाली होनी चाहिए। वो उस वक्त अगर किसी भावनात्मक दौर से गुजर रही है तो उसकी बातों को सुने, अनसुना नहीं करना है और उसकी बातों को समझ के और उसके साथ में क्या समाधान निकाले जा सकते हैं उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा मासिक धर्म और शरीर में होने वाले बदलाव पर खुलकर बातचीत करें। बच्ची को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई बीमारी है, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, ये किसी भी स्वस्थ शरीर की एक आवश्यक चीज है जो हर स्वस्थ बालिका के जीवन के हिस्से के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है। तो खेल और शारीरिक गतिविधि के लिए पर्याप्त समय और अवसर भी उपलब्ध करवाना माता पिता की जिम्मेदारी में आता है।
1: बिल्कुल।
0: जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य जांच, आयरन फॉलिक एसिड की गोली नियमित लेने के लिए सहयोग करना, ये सब चीजें माता पिता को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरह अगर अपन स्कूल की भूमिका की बात करें तो स्कूल किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी और व्यवहार विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। तो स्कूलों में संतुलित भोजन, एनीमिया, मासिक धर्म, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर नियमित चर्चाएं होनी चाहिए। आयरन फॉलिक एसिड की गोली, स्वास्थ्य जांच, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय और खेलकूद की उचित व्यवस्था भी जरूरी है। तो स्कूल की भूमिका बनती है कि शिक्षकों के साथ मिलकर किशोरियों की समस्याओं को समझने और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में उनका सहयोग करें।
1: बिल्कुल। और अगर मैडम किसी किशोरी का विवाह समय से पहले हो जाए और कम उम्र में गर्भधारण हो तो पोषण पर कुछ असर पड़ सकता है?
0: बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में शादी और गर्भ धारण कर लेने से किशोरी के शरीर पर अतिरिक्त पोषण और स्वास्थ्य संबंधी दबाव आ जाता है। एक तो उसे खुद के लिए पोषण तो लेना ही लेना होता है, अब गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी उसको तो पोषण की जरूरत होगी। तो उस समय क्या होता है कि बालिका का जो शरीर है वो भी विकास कर रहा होता है और इससे आयरन, फॉलिक एसिड और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है और एनीमिया तथा पोषण की कमी का जोखिम बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए किशोरी को पहले अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पर्याप्त पोषण और समय मिलना जरूरी है। कम उम्र में शादी और गर्भ धारण को रोकना किशोरी के स्वस्थ भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल। तो मैम सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किशोरियों के लिए बनी हुई है?
0: देखो, किशोरियों के लिए सरकार की ओर से अगर अपन देखें तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, आयरन फॉलिक एसिड की साप्ताहिक खुराक है, एनीमिया की रोकथाम से जुड़ी सेवाएं और पोषण के अंतर्गत किशोरी बालिका योजना जैसी पहल की जा रही है। इनके माध्यम से किशोरियों को आयरन, फॉलिक एसिड, स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी जानकारी और जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाता है। इसके अलावा परिवारों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से इन सेवाओं की जानकारी लेना, उनका लाभ जरूर उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम कार्यक्रम में हमने किशोरावस्था में पोषण से महत्वपूर्ण जुड़ी जो बातें थी उनके बारे में ढेर सारी बातों को जाना, तो अंत में आपकी महत्वपूर्ण सलाह हमारे श्रोता साथियों को क्या रहेगी जिससे किशोरियों के पोषण का ध्यान रखा जा सके?
0: मैं अपने श्रोता साथियों को ये कहना चाहूंगी कि किशोरी के पोषण को परिवार की प्राथमिकता बनाएं, उसको पर्याप्त अलग अलग तरह के विविध तरह के भोजन दें, आयरन फॉलिक एसिड की गोली नियमित लेने के लिए उसकी मदद करें, खेलकूद और शारीरिक गतिविधि के लिए उसको समय दें, स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या पर समय पर सलाह लेने के लिए पहुंचे और सबसे जरूरी है कि किशोरी की बात सुने। किशोरावस्था में बच्चियों के मन में बहुत बातें होती है अंजलि, लेकिन उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो ना तो उनकी कोई उनकी हम उम्र साथियों के साथ मिलने, बैठने, बातें करने के उनके पास मौके होते हैं और ना ही घर परिवार और स्कूल में कहीं ऐसे मौके उनको मिलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उनके स्वास्थ्य और पोषण को उतना ही महत्व दिया जाए जितना परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए दिया जाता है।
1: बिल्कुल। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: थैंक यू सो मच अंजलि, मुझे वागड़ रेडियो के साथ जुड़कर हमेशा खुशी होती है।
1: श्रोता साथियों, आज की बातचीत से एक बात साफ है कि किशोरी का पोषण किसी एक दिन या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, परिवार, स्कूल, समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं सभी का सहयोग मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना सकता है जिसमें हमारी बेटियां बिना झिझक अपनी जरूरतों के बारे में बात कर सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, क्योंकि बेटियों को भोजन में भेदभाव नहीं, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन चाहिए। उन्हें अपनी पसंद नापसंद के साथ साथ शरीर की जरूरत को समझना भी जरूरी है। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इस दौरान स्वच्छता के साथ पर्याप्त भोजन, पानी और आराम का ध्यान रखना चाहिए। आयरन, फोलिक एसिड जैसी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी विशेषज्ञों या स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। तो श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है इसी कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहे हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनों घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाई बोनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बोनों आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि आपड़े जे किसान भाई बोन है ये संतुलित उर्वरकों नु प्रबंधन हेते करी शके। आज आपड़े जानंगा कार्यक्रम ने माध्यम तक कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन नो हूँ मतलब है आ केम जरूरी है ने वधारे असंतुलित उर्वरकों नु आपड़े प्रयोग कर दो तो अंत की हूँ नुकसान था ने समाधान ना हूँ उपाय थी शके। तो वाते अमारी आप तक की कार्यक्रम में घणा कानी थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहला आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमारे रहू आप रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બેન્ડ બોનું ગીત તો આઈશું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ બોનો, અમે આપને ગીત કે પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા રહો કે આપણે સંતુલિત ઉર્વરકોનું પ્રબંધન હેતે કરી શક. તો આના વિશે માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી માંગીલાલજી. તો સૌથી કે પહેલા આપણે હામરી લેણાની વાતે ને મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: જી ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ સંતુલિત ઉર્વરક કા પ્રબંધન કો લેકર. જાનેંગે આજ કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે કે કિસ તરીકે સે હમારી જો મિટ્ટી હૈ વો સંતુલિત ઉર્વરક કે માધ્યમ સે સ્વસ્થ ઓર ખુશહાલ રહે સકતી હૈ. તો જૈસા કે આજ કાર્યક્રમ મેં હમારી આપસે ઇસ વિષય પર બાતચીત રહેને વાલી હૈ તો સબસે પહેલે આપ હમે યહી બતાઈએ કે સંતુલિત ઉર્વરક પ્રબંધન ક્યો આવશ્યક હૈ.
1: જી તો દેખીએ, બહુ અચ્છા સવાલ હૈ ઓર વર્તમાન કે આવશ્યકતાએ હૈ જો ઇસ વિષય પર બહુત હૈ ઓર ઇસ વિષય પર ધ્યાન આકર્ષિત કરના કિસાન ભાઈઓ કા ઓર સમાજ કા બહુ જરૂરી હૈ.
0: બિલકુલ.
1: તો દેખીએ, જૈસે મિટ્ટી હૈ તો ઉસકો હમ સમજતે હૈ કે વો કેવલ ફસલ કા માધ્યમ હૈ, લેકિન એસા નહીં હૈ. બલ્કિ અગર મિટ્ટી કો હમ દેખતે હૈ તો એક જીવિત પ્રાકૃતિક સંસાધન હૈ. તો જિસ પ્રકાર મનુષ્ય કો સંતુલિત ભોજન કી આવશ્યકતા હોતી હૈ, ઉસી પ્રકાર મિટ્ટી કો ભી સંતુલિત પોષણ કી આવશ્યકતા હોતી હૈ. यदि मान लो खेत में एक ही प्रकार के उर्वरक बार बार उपयोग करते हैं या वो भी अगर रासायनिक हो तो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो घटने लगती है.
0: जी जी.
1: और उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं या उसके अंदर जो पौष्टिकता है वो धीरे धीरे खत्म होती है, जिसके कारण उत्पादन की लागत एक तो बढ़ जाती है, दूसरा है कि पर्यावरण है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन है उसका अर्थ अगर सामान्यतः देखे तो मिट्टी की आवश्यकता, फसल की जरूरत और उपलब्ध स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जैविक प्राकृतिक और रासायनिक उर्वरकों का उचित मात्रा में उपयोग करना.
0: बिल्कुल.
1: जहाँ पे हम बात करते हैं जैसे मिट्टी पोषण की, तो मिट्टी का पोषण है उसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है आपका उर्वरक. और उसमें भी वो है कि कौन से प्रकार का उर्वरक है वो आप उपयोग कर रहे हैं.
0: जी जी.
1: अगर आप एक ही प्रकार का रासायनिक जैसे अभी चलन में आ रहा है डीएपी यूरिया है, अगर आप इस तरह के खाद उपयोग करते हो तो आपकी मिट्टी है वो धीरे धीरे खराब होगी, उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाएगी और आपका उत्पादन है वो भी उतनी मात्रा में नहीं होगा.
0: बिल्कुल
1: जी. तो इस तरह से हमें को समझा जा सकता है.
0: जी हाँ सर, आपने सही कहा. जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन क्यों आवश्यक है, यही अब बात आती है कि असंतुलित उर्वरकों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं?
1: जी देखिए, संतुलित और असंतुलित की हम बात करते हैं तो अगर संतुलित देखा जाए तो मिट्टी की उर्वरकता है वो लंबे समय तक बनी रहती है. जैसे हम देसी खाद का उपयोग करते हैं, फसल की उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ती है आपकी, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, खेती में आपकी लागत है वो कम हो जाती है क्योंकि आप परंपरागत खाद का उपयोग कर रहे हो.
0: जी जी.
1: भूमि में जो जैविक कार्बन है वो बढ़ता है और जो सूक्ष्म लाभकारी जो जीव होते हैं वो आपके सुरक्षित रहते हैं, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और किसानों की आय है वो स्थिर रहती है, वो सस्टेनेबल रहती है. तो इसी तरह हम बात करते जैसे असंतुलित उर्वरकों की, तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपकी मिट्टी है वो सख्त और बंजर होने लगती है.
0: जी हाँ.
1: अगर आप जो है एक ही प्रकार का डालेंगे, आप रासायनिक का उपयोग करेंगे तो इस तरह की समस्या हो जाती है, धीरे धीरे आपका उत्पादन घटते चला जाता है. इसी तरह उत्पादन के साथ साथ में जो कीटों का प्रकोप है वो बढ़ जाता है.
0: बिल्कुल.
1: तो वो भी आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है. इसके साथ ही जब आपकी जमीन बंजर हो जाएगी या फिर उसमें पोषण की कमी होगी तो उसको सिंचाई की आवश्यकता बढ़ जाती है.
0: जी जी.
1: दूसरा है, देखा जाए तो फसल की जो गुणवत्ता है, जो उसके अंदर पोषक तत्व है, उनकी मात्रा भी कम हो जाएगी.
0: बिल्कुल.
1: इसके साथ में जो आपकी खेती है उसकी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप परंपरागत खाद की जगह रासायनिक का उपयोग करते हैं तो बहुत प्रकार के आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है, तो आपकी जेब भी भारी पड़ेगा.
0: बिल्कुल.
1: तो इस तरह से दूसरा है कि आपका धीरे धीरे क्या पर्यावरण है, तो पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. तो जैसा कि आपने हमें बताया कि असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से क्या नुकसान है, तो इसे संतुलित करने के लिए हमें कौन कौन से उपायों को अपनाने की जरूरत है?
1: देखिए, उपाय है वो हमारे पास में है, कहीं दूर नहीं है, हमारे समुदाय के पास में है, बरसों से हमारे पूर्वज है उनको अपनाए हैं, हमें वापस से उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए, उनको देखना चाहिए. जैसे हम बातचीत में हमने कहा कि देसी खाद, देसी खाद की आप बात करते हैं तो जैसे आपका गोबर खाद है,
0: बिल्कुल,
1: तो आप गोबर खाद है उसका उपयोग कीजिए, जो राख वगैरह जो हमारे निकलती है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे हरे पत्तों की खाद जिसको हम हरी खाद बोलते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जंगल में जो सूखी पत्तियां होती है उनसे आप कंपोस्ट कर सकते हैं, जिसमें अभी हम उकेड़ा जैसे हम कह रहे हैं तो उकेड़ा के माध्यम से आप उसको कंपोस्ट कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के बेड बना सकते हैं आप, इसके लिए सरकार भी आपको सहायता देती है और जो हमारी संस्थाएं हैं वो भी मार्गदर्शन देती है सभी किसान भाइयों को।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ में हमारे जो हांगणी खेती है उसको हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हांगणी से कई प्रकार का जो खाद है वो आपकी मिट्टी को मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: तो वो उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। जो दलहनी फसलें हैं उनका समावेश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही एक जो फसल आपने कर दी। और दूसरा कि जो खेत की मेड़ों पर है वो घास हम लगाते हैं या घास होती है या फिर हमारे जो भी अवशेष होते हैं खेतीबाड़ी के, उनको भी आप कंपोस्ट करके या फिर आप मिट्टी में फैला के उनकी जुताई कर सकते हो।
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो आसान तरीके हैं जो हमारे पूर्वजों ने भी अपनाया है और इससे आपकी मिट्टी है उसकी पोषकता हमेशा लंबे समय तक बनी रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: और किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव है उस पर नहीं पड़ेगा, तो ये हमें करना चाहिए। इसके साथ में कभी कभी हमारे जो किसान भाई है उनको मिट्टी का टेस्ट कराना चाहिए कि मिट्टी की आवश्यकता क्या है, उसमें पोषक तत्व कैसे हैं, तो एक जो पिक्चर है वो आपको सामने निकल कर आएगी और कराना चाहिए, पूरी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी आपको, तो आप अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। दूसरा, आप जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि केंद्र है वहाँ पे आप करा सकते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह से हमें करना चाहिए। दूसरा, इसी में मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाई जो है हमेशा जो मिट्टी का प्रशिक्षण जो करते हैं तो प्रशिक्षण के बाद में क्या हो कि पता लग जाएगा आपको, तो उसके अनुसार आप खाद का उपयोग करें।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ पे जैविक खाद जो है आप उसका नियमित उपयोग करें, उसको डालें, और रासायनिक जो खाद है वो आप बिल्कुल उनका उपयोग ना करें
0: जी जी,
1: ताकि इस तरह की समस्याएं पैदा ना हो। हरी खाद का आप उपयोग करें, इसके साथ में जो हमने फसल चक्र की बात की उसको आप बदल बदल कर अपनाएं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार से करते रहें, तो ये जो चीजें हैं। दूसरा, जैव विविधता का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई प्रकार के कीट और सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी मिट्टी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए। तो जब अगर किसान भाई रासायनिक का उपयोग करेंगे तो जो जीव है वो नष्ट हो जाते हैं और उसके कारण उस मिट्टी का जो पुनः जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो मिट्टी क्या होती है, गाढ़ी हो जाती है। आप देखोगे कि बारिश होती है तो मिट्टी एकदम पत्थर की तरह हो जाती है, तो उसका कारण यही है कि आपने रासायनिक बहुत उपयोग किया, मिट्टी बुरबुरी नहीं रहती है
0: जी। हाँ,
1: जबकि आपकी मिट्टी जितनी बुरबुरी रहेगी, जितना देसी खाद डालोगे उत्पादन उतना अच्छा होगा, आपके जो बीजों का जर्मिनेशन है, जो उगने वाली जो क्षमताएं है वो ज्यादा होगी। बाकी कई बार जो है रासायनिक में दिक्कतें पैदा हो जाती है
0: जी,
1: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, जैसा कि आपने हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, यही समुदाय की इन सारी चीजों में क्या भूमिका है?
1: देखिए, समुदाय जो है वो निर्णय ले सकता है अपने क्षेत्र में कि आपको किस तरह के खाद बीजों का उपयोग करना है। तो आप लोग अधिक से अधिक पशु रखें, पशुओं का खाद जो निकलता है गोबर वो आप खेती में डालें, तो ये हमारे समुदाय की जिम्मेदारी है, हमारे परिवारों की जिम्मेदारी है। मिट्टी के जो परीक्षण है उसके प्रति जागरूकता फैलाना, दूसरा मिट्टी का पोषक तत्व है वो क्यों आवश्यक है उसके प्रति आप संवाद करें समुदाय में, आपके गांव में। दूसरा, जैसे हम मिट्टी दिवस मनाते हैं, बीज उत्सव मनाते हैं, इनमें अधिक से अधिक लोग जाकर वहां पे जो सारी चीजों को समझना चाहिए और उनपे विस्तार से संवाद करें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए
0: जी। हाँ,
1: तो ये जरूरी है। स्थानीय ज्ञान है जो हमारा परंपरागत है, जो हमारे बुजुर्ग है उनके साथ हमें बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से है मिट्टी की पोषकता को बढ़ाया जा सकता है और वो क्या उपयोग करते थे। दूसरा है कि रासायनिकों का जो उपयोग है वो अंधाधुंध उपयोग हो रहा, भी आप देख रहे होंगे लंबी लाइनें लग जाती है, लेकिन ऐसा जो स्थितियां नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना खुद का जो खाद है वो रखें, आप चाहे वो बर्मी बेड से आप बर्मी कंपोस्ट बनाएं, चाहे वो केड़ा हो, चाहे आपका गोबर खाद हो।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह की जो है प्रैक्टिस, जो अभ्यास है उनको हमें पुनः जो अपनाना पड़ेगा ताकि हमारी मिट्टी भी खराब नहीं हो, हमारी जो उत्पादन है वो भी अच्छा हो और जो उत्पादित होता है अनाज उसकी गुणवत्ता भी काफी बेहतर रहती है।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह मनुष्य का स्वास्थ्य जरूरी होता है उसी तरह मिट्टी का भी स्वास्थ्य जरूरी होता है। हमारी मिट्टी हमारी माँ जैसी होती है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। अधिक से अधिक जो देसी खाद बीज का उपयोग करें और अच्छा उत्पादन के साथ अच्छी पोषक जो फल सब्जियां हैं और अनाज है वो आप अपनी थाली में उपयोग करें।
0: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: जिम की भाई बोनो हमने अपने वैस में मांगीलाल जी जुड़े तक हता ने एने अपना ने घनी असल तरीका तकी बताड़ू है कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन तकी स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ फसल ने स्वस्थ परिवार ने नींव अपने बनावी शक। एने अपना ने बताड़ू है कि आना उर्वरक नु प्रबंधन अपना ने हाथ करव है, किसान भाई बोन हूँ करी सके ने एने साथे समुदाय नी आन में हूँ भूमिका है। तो आशा कर हूँ भाई बोनो के आ हंगरी बात आपने गमी होंगा क्योंकि हवे टाइम थी गयो है अपने अणस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ पण साथे पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: भूमि आवंटन हो दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया हर बूंद ने मले सही जानकारी सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार याद रखो जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है
4: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितली शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो होवे आज नाना ना कदम है ई अब्बावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है जल और प्रकृति की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा को लेकर। जैसा कि अंजलि हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं जरा सोचिए कि सुबह जब हम उठे और नल खुले लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी ना आए, खेतों में सिंचाई के लिए पानी न हो, पशुओं के लिए पानी न मिले और पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगे, तब हमें समझ आएगा कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे, जल और प्रकृति की रक्षा को लेकर बातें करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है जल और प्रकृति की रक्षा को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो कहना चाहेंगे श्रोताओं कि पानी केवल हमारी प्यास बुझाने का साधन नहीं है, पानी खेतों की हरियाली है, पशु पक्षियों का जीवन है, जंगलों की श्वास है और हमारे पूरे पर्यावरण का आधार है। जिस तरह शरीर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह पानी और प्रकृति के बिना धरती पर जीवन संभव भी नहीं है। हम देखते हैं अंजलि कि आज विकास के नाम पर हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है। जंगल कम हुए, जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा, भूजल का स्तर गिरा और नदियों तथा तालाबों में प्रदूषण बढ़ा। इसका असर केवल आज पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए जल और प्रकृति की रक्षा केवल पर्यावरण बचाने का काम नहीं बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जल है तो जीवन है।
0: बिल्कुल।
1: हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर हर छोटे बड़े काम में पानी की आवश्यकता होती है। पीने, खाना बनाने, खेती, पशुपालन, स्वच्छता और उद्योग, हर क्षेत्र में पानी पर निर्भरता है। श्रोता साथियों, ग्रामीण जीवन में तो पानी का महत्व और भी अधिक है। किसान के लिए पानी फसल की उम्मीद है, पशुपालक के लिए पानी पशुओं का जीवन है। गांव के तालाब, कुएं, बावड़ियां और नदियां केवल जल स्रोत नहीं है बल्कि गांव की जीवन रेखा भी है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, जब पानी को आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल किया जाता है और वर्षा के पानी को जमीन में जाने का अवसर नहीं देते हैं तो धीरे धीरे जल संकट बढ़ता है। इसलिए आज जरूरत है जागृति जी कि पानी को केवल उपयोग करने की चीज न समझें बल्कि उसे बचाने की जिम्मेदारी भी समझी जाए।
0: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश में वर्षा के रूप में हर साल बड़ी मात्रा में पानी आता है, लेकिन अगर बारिश का पानी बहकर निकल जाए और उसे संग्रहित न किया जाए तो वर्षा के बाद भी पानी की कमी बनी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: घर की छत से आने वाले पानी को टंकी या रिचार्ज पेट में पहुँचाया जा सकता है। गाँव में तालाबों, नालियों और छोटे जल स्रोतों को गहरा और साफ रखा जा सकता है। खेतों में मेड़बंदी और जल संरक्षण के अन्य स्थानीय उपाय भी किए जा सकते हैं। बारिश की एक एक बूंद को रोकना भविष्य के लिए पानी जमा करना जैसा है।
1: बिल्कुल।
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे श्रोताओं कि आज कई स्थानों पर खेती, घरेलू उपयोग और अन्य जरूरतों के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ी है। लगातार पानी निकालते रहने और कम पानी जमीन में पहुंचने से भूजल स्तर प्रभावित हो सकता है। इसका समाधान अंजलि केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि गांव का प्रत्येक परिवार इसमें योगदान दे सकता है। नल खुला छोड़ने से बचना चाहिए, पाइपलाइन में रिसाव ठीक करना होगा, जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग करना होगा, वर्षा जल को जमीन में पहुंचाना होगा। ये जो छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे सामने पेड़ पौधे आते हैं, लेकिन प्रकृति का संसार इससे कहीं बड़ा है। जंगल, नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, हवा, जल, पशु पक्षी, छोटे जीव सभी प्रकृति का हिस्सा है। श्रोता साथियों, प्रकृति का हर घटक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पेड़ मिट्टी को संभालते हैं, वर्षा के चक्र में योगदान देते हैं और अनेक जीवों को आश्रय देते हैं। जल स्रोत मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए प्रकृति की रक्षा का अर्थ उसे पूरे संतुलन की रक्षा करना नहीं है, पेड़ लगाना ही नहीं, पेड़ बचाना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, अक्सर हम वृक्षारोपण के समय पौधे लगाते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन पौधा लगाना शुरुआत है, जिम्मेदारी का अंत नहीं है। एक पौधे को बड़ा होने के लिए पानी, मिट्टी, सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए जागृति जी, जितने पौधे लगाएं उतने ही पौधों की देखभाल का संकल्प भी लें।
0: बिल्कुल।
1: स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पेड़ पौधों का चयन करना और उन्हें नियमित रूप से पानी देना प्रकृति संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जल संरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं कि जल और प्रकृति की रक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं, ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि जल का संरक्षण हम कैसे करें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके, यही बात करें पानी बचाने वाली खेती की, तो श्रोता साथियों, हमारे गांव की अर्थव्यवस्था में खेती की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जल संरक्षण का संबंध खेती से भी सीधे जुड़ा हुआ है। किसान सिंचाई के पानी का उपयोग आवश्यकता और फसल की स्थिति के अनुसार कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: खेत में पानी को रोकने के लिए मेड़बंदी, वर्षा जल संचयन और मिट्टी में नमी बनाए रखने के स्थायी उपाय उपयोगी हो सकते हैं। कम पानी में अच्छी तरह होने वाली फसलों और स्थानीय अनुभवों पर भी ध्यान दिया जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि जब किसान पानी बचाता है तो वो केवल अपनी फसल नहीं बचाता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्रोत भी बचाने में योगदान देता है। हमारे गांवों में पहले तालाब, कुएं, बावड़ियां और अन्य पारंपरिक जल स्रोत जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, इन जल स्रोतों की सफाई देखभाल सामूहिक रूप से किया करते थे हम सभी। आज जरूरत है कि हम अपनी स्थानीय जल परंपराओं से सीखें, पुराने जल स्रोतों की स्थिति देखें, उनमें कचरा न डालें और जहां संभव हो सामुदायिक प्रयासों से उनके साफ सफाई और संरक्षण करें।
1: बिल्कुल,
0: हमारी परंपराओं में छिपा जल ज्ञान आज भी भविष्य के लिए उपयोगी हो सकता है।
1: जी हाँ अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि पानी बचाना केवल पानी की मात्रा बचाना नहीं है, पानी को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: तालाब, नदी या नाले में कचरा डालना, प्लास्टिक फेंकना या गंदे पानी को बिना उचित व्यवस्था के जल स्रोतों तक पहुंचने देना जल प्रदूषण को बढ़ा सकता है। इसीलिए श्रोताओं, गांव और शहर दोनों जगह कचरे का उचित प्रबंधन, प्लास्टिक के उपयोग में कमी और जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: जी जी,
1: प्रकृति हमें हवा, पानी, भोजन, मिट्टी, लकड़ी, औषधीय पौधे और बहुत सारे संसाधन देती है। लेकिन श्रोताओं, अगर हम केवल लेते रहें और प्रकृति को वापस कुछ न दें तो उसका संतुलन बिगड़ सकता है। एक पेड़ लगाना, जल स्रोत बचाना, मिट्टी को प्रदूषण से बचाना, पशु पक्षियों के लिए पानी रखना और कचरे को सही स्थान पर डालना, ये प्रकृति को कुछ लौटाने के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीके हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि प्रकृति संरक्षण की आदत बचपन से विकसित की जा सकती है। बच्चों को पानी की कीमत समझाना, पौधों की देखभाल करवाना और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भविष्य की मजबूत नींव है, क्योंकि युवा नई तकनीक और नए विचारों के माध्यम से जल संरक्षण के लिए स्थानीय समाधान खोज सकते हैं। वे गांव में जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जल स्रोतों की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं और लोगों को छोटे छोटे संरक्षण उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जल और प्रकृति किसी एक परिवार या व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, इनका लाभ पूरे समाज को मिलता है, इसलिए इनके संरक्षण में भी पूरे समुदाय की भागीदारी आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
0: गांव में ग्राम सभा के माध्यम से जल स्रोतों की स्थिति, वर्षा जल संरक्षण, पौधारोपण, स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल जैसे विषयों पर चर्चा की जा सकती है। जब गांव मिलकर किसी तालाब को बचाने, किसी जल स्रोत को साफ रखने या पेड़ों की देखभाल करने का निर्णय लेता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दे सकता है।
1: जी अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल अपने निर्णय लेने का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तो तब मजबूत होता है जब गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी भी समझता है। जिस गांव में पानी की कीमत समझी जाती है, जहां जल स्रोतों की देखभाल होती है, जहां पेड़ों को बचाया जाता है और जहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समझदारी से किया जाता है, वह गांव अपने भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: जल और प्रकृति की रक्षा वास्तव में आत्मनिर्भर और जिम्मेदार समाज की पहचान है। श्रोताओं, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे अकेले के प्रयास से क्या हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन हमेशा, हम कहते हैं कि छोटे कदमों से ही शुरू होता है।
0: जी जी।
1: नल को खुला न छोड़ना, पानी की टंकी को ओवरफ्लो होने से बचाना, घर में पानी की समझदारी से उपयोग करना, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, कचरा जल स्रोत में न डालना, ये सारे छोटे छोटे जो कदम है वो हमें करने चाहिए।
0: जी जी।
1: जब एक परिवार ऐसा करता है अंजलि, तो एक बदलाव होता है। जब पूरा मोहल्ला ऐसा करता है तो बड़ा बदलाव होता है। जब पूरा गांव ऐसा करता है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य तैयार होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि जल की हर बूंद में भविष्य की एक संभावना छिपी है और प्रकृति के हर सांस में जीवन की उम्मीद। आज हम प्रकृति को जिस रूप में बचाएंगे, आने वाली पीढ़ियां उसी रूप में उसे पाएगी। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए केवल घर, खेती और संपत्ति ही छोड़कर न जाएं, बल्कि स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी, हरे भरे पेड़ और स्वास्थ्य पर्यावरण भी छोड़कर जाएं। याद रखिए कि पानी बचाना केवल आज की जरूरत पूरी नहीं करता बल्कि कल की प्यास बुझाने की तैयारी है।
1: बिल्कुल,
0: पेड़ बचाना केवल हरियाली बचाना नहीं बल्कि जीवन की सांस बचाना भी है। इसलिए हम सभी एक बात अपने जीवन में अपना सकते हैं कि पानी की हर बूंद का हम सम्मान करेंगे, प्रकृति से उतना ही लेंगे जितना जरूरत है, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे और पेड़ लगाएंगे और उन्हें बड़ा होने तक संभालेंगे, क्योंकि जल सुरक्षित होगा तो प्रकृति सुरक्षित होगी, प्रकृति सुरक्षित होगी तो जीवन सुरक्षित होगा और जीवन सुरक्षित होगा तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा।
1: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं अंजलि कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के बाद ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है खेल में छिपा है सेहत का राज को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम काम, पढ़ाई और मोबाइल में तो घंटों बिता देते हैं, लेकिन खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते।
0: जी हाँ।
1: जबकि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और खुशहाल जीवन की मजबूत नींव है। बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए खेल किसी दवा से कम नहीं।
0: जी हाँ।
1: आइए श्रोता साथियों, आज हम यही जानेंगे कि आखिर खेल हमारी सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है और कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे शामिल कर सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं खेल में छिपा है सेहत का राज।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। यदि शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है और श्रोता साथियों सोच सकारात्मक है तो जीवन के हर चुनौती का सामना हम आसानी से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में मोबाइल कंप्यूटर की बढ़ती निर्भरता, शारीरिक श्रम की कमी, साथ ही असंतुलित खान पान के कारण श्रोता साथियों अनेक लोग कम उम्र में ही मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव और हृदय रोगों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों यदि कोई सबसे सरल, प्राकृतिक और आनंददायक उपाय है जो कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है वो है श्रोता साथियों खेल।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि मनुष्य का जो शरीर है वो चलने फिरने के लिए बना हुआ है। जब शरीर सक्रिय रहता है श्रोता साथियों तब रक्त संचार अच्छा होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर ऊर्जा से भर जाता है।
0: बिल्कुल
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि खेल हमें केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं।
0: जी हाँ।
1: जो लोग नियमित रूप से खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, उनमें कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। वे अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और सकारात्मक सोच वाले होते हैं।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि खेल से मिलने वाले कई शारीरिक लाभ हैं जो हम सभी को पता होना चाहिए। खेल से हमारा जो शरीर है वो मजबूत बनता है। दौड़ना, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्सी कूदना जैसे खेल शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। खेलने से दिल की कार्य क्षमता बढ़ती है और रक्त संचार भी बेहतर रहता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों आज मोटापा एक सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। खेल अतिरिक्त कैलोरी जलाकर वजन नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।
0: जी हाँ।
1: नियमित शारीरिक गतिविधियां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है, इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम खेल खेलते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
0: जी हाँ।
1: इससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा कम होता है और बढ़ते बच्चों और युवाओं के लिए खेल हड्डी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल
1: इसलिए श्रोता साथियों खेल के कई सारे लाभ हैं। अगर हम खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य में खेलों की क्या भूमिका है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्या है वो तेजी से बढ़ रही है।
1: बिल्कुल
0: ऐसे में हम देखते हैं श्रोता साथियों के खेल है वो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन बनाते हैं जो मन को प्रसन्न रखते हैं। इससे हमारा तनाव है वो कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही श्रोता साथियों हमारा मन है वो सकारात्मक रहता है।
1: बिल्कुल
0: नियमित खेल खेलने वाला व्यक्ति श्रोता साथियों कम तनाव का महसूस करता है, अच्छी नींद लेता है, निर्णय लेने में सक्षम होता है। साथ ही अंजलि जी हम देखते हैं कि ध्यान और एकाग्रता की शक्ति है वो भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल
0: और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना वो जानता है।
1: बिल्कुल इसलिए कहा जाता है मनीषा कि खेल शरीर ही नहीं मन का भी उपचार करता है। श्रोता साथियों आज अधिकांश बच्चे मोबाइल और टीवी में अधिक समय बिताने लगे हैं, इससे उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो रही है। खेल बच्चों को अनुशासन सिखाता है, टीम की भावना विकसित करता है, हार जीत स्वीकार करना सिखाता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास पैदा होता है और रचनात्मक सोच विकसित होती है। बच्चों को रोज कम से कम श्रोता साथियों 1 घंटा खुले मैदान में खेलने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: ताकि बच्चे जो हैं वो स्वस्थ जीवन जी सके।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से खेलों में छुपा है सेहत का राज इस विषय को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना। गीत से पहले हम जान पाए कि खेल जो है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ कैसे पहुंचाता है, बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है, और यही अब बात आती है महिलाओं के लिए खेल क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, अक्सर महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती है लेकिन अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती है। यदि महिलाएं प्रतिदिन कुछ समय खेल, तेज चलना और योग, रस्सी कूदना जैसी गतिविधियां अपनाए तो शरीर स्वस्थ होगा, थकान कम होगी, मानसिक तनाव घटेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। श्रोता साथियों, स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की आधारशिला होती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ युवावस्था भी खेल का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। युवावस्था ऊर्जा का समय है। यदि ऊर्जा खेल में लगे तो युवा नशे, गलत संगति और अनेक सामाजिक बुराइयों से दूर रह सकते हैं। खेल युवाओं में अनुशासन, समय प्रबंधन, नेतृत्व, धैर्य, मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना विकसित करते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल अंजलि जी। यहीं अगर हम बात करें कि आधुनिक जीवन शैली में खेलों की आवश्यकता क्यों है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज अधिकतर लोग ही वो घंटों तक मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इससे अंजलि जी, हम देखते हैं कि मोटापा बढ़ता है, आंखों पर असर पड़ता है, साथ ही हमारे गर्दन और कमर में दर्द होने लगता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है श्रोता साथियों, नींद प्रभावित होती है। अगर श्रोता साथियों, यदि हम प्रतिदिन कम से कम 45 से 60 मिनट हम खेलों के लिए निकालते हैं तो ये सारी समस्याएं वो काफी हद तक कम हो सकती हैं।
0: यही
1: अगर अंजलि जी बात करें कि खेल हमें जीवन जीना कैसे सिखाते हैं, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि खेल केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाते बल्कि हमारे व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। खेल हमें सिखाते हैं मेहनत का महत्व, हमें सिखाते हैं नियमों का पालन करना सिखाते हैं, टीम वर्क के साथ काम करना सिखाते हैं, धैर्य रखना, हार से सीखकर आगे बढ़ना और साथ ही श्रोता साथियों, जीत में विनम्र रहना सिखाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ये गुण जीवन के हर क्षेत्र में श्रोता साथियों हमें सफलता दिलाते हैं।
0: जी हाँ मनीषा, खेल का अर्थ केवल प्रतियोगिता नहीं होता है। बुजुर्ग भी हल्की और शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि सुबह शाम टहलना, हल्का योग करना, आसान व्यायाम करना, पार्क में समूह गतिविधि करना। इससे शरीर चुस्त रहता है और अकेलेपन की भावना भी कम होती है। श्रोता साथियों, हमारे गांवों में पहले बच्चे और युवा कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, सितोलिया, रस्सा कस्सी, लंगड़ी दौड़ जैसे खेल खेलते थे। इन खेलों में पैसे नहीं लगते लेकिन पूरा शरीर सक्रिय रहता है। आज जरूरत है मनीषा कि हम इन पारंपरिक खेलों को फिर से जीवित रखें। आज मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है लेकिन जब मोबाइल खेलने की जगह ले लेता है तब समस्या शुरू होती है।
1: जी हाँ।
0: तो मोबाइल देखने से आंखों पर असर पड़ता है, गर्दन और पीठ में दर्द होता है, नींद खराब होती है, मोटापा बढ़ता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, जितना समय स्क्रीन पर बिताएंगे उतना ही समय शारीरिक गतिविधियों के लिए भी निकालें, क्योंकि हम देखते हैं कि खेल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: गांव में खेल की संस्कृति को बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल दिवस मनाना चाहिए, पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होनी चाहिए, स्कूल में खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बेटियों को बराबरी से खेलने का अवसर मिलना चाहिए, खाली मैदान सुरक्षित रखे जाए, परिवार स्वयं बच्चों को खेलने के लिए भी प्रेरित कर सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज लोगों को केवल दवाइयों के बारे में नहीं श्रोता साथियों बल्कि स्वस्थ जीवन शैली के बारे में भी जागरूक करना आवश्यक है। यदि विद्यालय, परिवार, ग्राम पंचायत, सामुदायिक संस्था और साथ ही रेडियो मिलकर खेलों को बढ़ावा दी तो हम देखते हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य वो सुधरेगा, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति है वो कम होगी, बुजुर्ग है वो अधिक सक्रिय रहेंगी, समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही हम देखते हैं कि भविष्य की पीढ़ी है वो अधिक स्वस्थ रह पाएगी।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि खेल वास्तव में स्वस्थ जीवन का आधार है। यह शरीर को शक्ति, मन को प्रसन्नता और जीवन में अनुशासन प्रदान करता है। खेल हमें केवल फिट नहीं बनाते हैं श्रोता साथियों बल्कि बेहतर इंसान भी बनाते हैं। आज जब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां श्रोता साथियों तेजी से बढ़ रही हैं, तब खेलों को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आधुनिक जीवन ने हमें अनेक सुविधाएं दी हैं लेकिन इन्हीं सुविधाओं ने हमारी सक्रियता भी कम कर दी है। वाहन ने पैदल चलना घटा दिया, मोबाइल ने मैदानों की रौनक कम कर दी, व्यस्त दिनचर्या ने खेल को फुर्सत का काम बना दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि खेल कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की अनिवार्य आदत है। यह हमें केवल बीमारियों से बचाने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य, सहयोग, नेतृत्व और सकारात्मक सोच का जीवन भर साथ देने वाला शिक्षक भी है। हम अपने घर, स्कूल और गांव में ऐसे संस्कृति विकसित करें श्रोता साथियों, जहां खेल को समय की बर्बादी नहीं बल्कि स्वास्थ्य और व्यक्तित्व निर्माण में निवेश माना जाए। बच्चों के हाथों में केवल मोबाइल नहीं बल्कि गेंद, बैट, रस्सी और कबड्डी की रेखाएं भी हो। युवा अपनी ऊर्जा को खेल के मैदान में दिशा दें, महिलाएं अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों को स्थान दें और बुजुर्ग अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय रहें। जब पूरा समुदाय खेल अपनाएगा तब केवल स्वस्थ व्यक्ति ही नहीं बल्कि अधिक ऊर्जावान, सहयोगी और खुशहाल समाज का निर्माण होगा। श्रोता साथियों, स्वस्थ रहने का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय हमारे अपने कदमों की सक्रियता और खेल के मैदानों से जुड़ा है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए आज ही संकल्प लें कि हर दिन थोड़ा खेलेंगे, हर दिन स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार व समाज को भी सक्रिय जीवन की प्रेरणा देंगे।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
0: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
1: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाइयों ने बोनो, जैवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनो नो रिश्तो है, जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा कर रहे हैं, तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारी आपसे बातचीत होती है एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा ही एक नया विषय हम लेकर हाजिर हुए हैं श्रोता साथियों। साथियों आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि हमें सपनों को सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि जीना शुरू कर देना है, क्योंकि हम देखते हैं कि सपने शब्द सुनते ही हमारे मन में बहुत सारी तस्वीरें बनने लगती हैं। जैसे कि कोई अच्छा किसान बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई अपना छोटा सा कारोबार जो है वो शुरू करना चाहता है, तो कोई चाहता है श्रोता साथियों कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तो कुछ लोगों का सपना ये होता है कि उनका जो घर है वो खुशियों से भर जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या सिर्फ सपना देख लेने से सपना पूरा हो जाता है? अगर दोस्तों उत्तर हाँ होता तो शायद दुनिया में हर व्यक्ति सफल होता। हम देखते हैं कि सपना तभी अपना रूप लेता है जब वह हमारी रोज की आदतों, मेहनत और फैसलों का हिस्सा बन जाता है। और इसी चीज को लेकर आज के हमारे कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें होंगी साथियों। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो दोस्तों इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले हम सुन लेते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत, फिर मैं अपनी बातचीत को फिर से जारी रखूंगी। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छा विषय हमारा आप सभी के साथ जुड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं साथियों कि सपनों को हमें सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि जीना शुरू कर देना चाहिए। साथियों, जैसा कि गीत से पहले भी कुछ छोटी मोटी बातें मेरी आपसे रही थी कि हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। कोई अच्छा शिक्षक बनना चाहता है, कोई अच्छा किसान बनना चाहता है, तो कोई छोटा सा कारोबार जो है उसे बड़ा करना चाहता है। साथियों, तो कुछ लोगों का सपना ये होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, ऐसे में प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ सपने सोच लेने से या देख लेने से पूरे हो जाते हैं? नहीं साथियों, उसके लिए हमें निरंतर मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है, त्याग करना होता है। साथियों, अगर मैं आपको बताऊं कि सपना देखना तो आसान है लेकिन उसे जीना कठिन होता है, ऐसा कई लोगों का सोचना होता है। दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है, सपने देखने पर कोई रोक नहीं होती साथियों, या कोई टैक्स नहीं लगता श्रोता साथियों। लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना पाते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि एक दिन मैं इस काम को शुरू करूंगा, या एक दिन मैं पढ़ाई अपनी पूरी कर लूंगा, या एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन दोस्तों, वह एक दिन महीनों में बदल जाते हैं, फिर सालों में, और फिर धीरे धीरे सिर्फ सपना ही इच्छा बनकर यह रह जाता है। दोस्तों, असल में समस्या सपने में नहीं होती, समस्या श्रोता साथियों सपने की शुरुआत करने में होती है। जी हाँ, इसलिए कई लोगों का ये मानना होता है कि सपने देखना तो आसान है लेकिन उसे जीना कठिन होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको बताऊं तो सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन टालने की आदत होती है, क्योंकि साथियों हम सोचते हैं कि ये काम मैं आज नहीं कल से शुरू करूंगा, या इस महीने नहीं अगले महीने से शुरू करूंगा, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। दोस्तों, कब वो धीरे धीरे इंतजार हमारी आदत बन जाता है, हमें याद ही नहीं रहता। सच तो ये है साथियों कि समय कभी अपने आप नहीं आता, सही समय वही होता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। जो लोग शुरुआत कर देते हैं साथियों, वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, और जो इंतजार करते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। साथियों, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं समय आने पर ये चीज करूंगा या करूंगी, तो दोस्तों हो सकता है कि वो समय आपका कभी आए ही नहीं। आपके मन में श्रोता साथियों, जब भी ये हौसला आ जाए कि आज मुझे इस काम को करना है, तो आप उसी दिन से उस काम की शुरुआत कर दें। इससे क्या होगा श्रोता साथियों, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन एक न एक दिन आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रोता साथियों, सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रोता साथियों एक कहावत कही गई है कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो श्रोता साथियों, ये बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है, अगर इसे आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपके सपनों को उड़ान मिल जाएगी। और जब सपनों को उड़ान मिल जाती है श्रोता साथियों, तो सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से, जैसा कि कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें तो बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम सपनों को पूरा करने की बात कर रहे हैं।

और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था श्रोता साथियों, कि सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि हम काम को टालने लगते हैं। श्रोता साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि आपका ये सपना है तो आप उसको पूरा करने में अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर आप समय की राह देखते रहेंगे श्रोता साथियों, तो सही समय कभी नहीं आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि सही समय आने पर इस काम को मैं करूँगा, तो दोस्तों वो समय बिल्कुल नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि इस काम को अगर मैं कल करूँ तो कल परसों बन जाएगा, परसों श्रोता साथियों तरसों बन जाएगा, और तरसों के बाद आप देखेंगे कि उस काम को करने में महीने गुजर जाएंगे। इसलिए श्रोता साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपने इस सपने को पूरा करना है, तो उसी समय उसकी तैयारी में आप जुट जाइए। अब यही श्रोता साथियों, अक्सर लोग सोचते हैं कि सपने केवल शहरों में रहने वालों के ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। गांव का किसान भी सपने देखता है, एक मजदूर भी सपना देखता है, एक गृहिणी घर में रहकर भी सपने देखती है, एक छात्र सपना देखता है श्रोता साथियों, बुजुर्ग भी चाहते हैं कि उनका परिवार खुश रहे। दोस्तों ये सारे जो सपने हैं वो सम्मान के योग्य हैं। सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, सपना सिर्फ अपना होता है दोस्तों। इसलिए सपनों को जीने का मतलब सिर्फ उनके बारे में बात करना नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि हर दिन ऐसा कोई काम करना है जो हमें उस सपने के थोड़ा और करीब लेकर जाए। जैसे कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो रोज उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा दोस्तों, और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने के सपने को जीना होगा। अगर कोई खेती बेहतर करना चाहता है और ये उसका सपना है, तो ऐसे में नई जानकारियों को लेना भी सपने जीने जैसा है। अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसकी छोटी सी बचत करना भी उसके लिए सपने जीने जैसा है। दोस्तों सपनों की शुरुआत बड़े कामों से नहीं होती, सपनों की शुरुआत छोटी आदतों से होती है। इसलिए आप आज से ही सपनों को पूरा करने की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी साथियों। लेकिन असफलता का मतलब ये नहीं है साथियों कि आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे होते हैं, लेकिन दोस्तों सपने परिश्रम त्याग भी मांगते हैं। इसलिए आप सपनों को पूरा करने में पीछे मत हटिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहिए साथियों। जैसे कि जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो हमें कई बार डर लगता है कि अगर असफल हो गए तो। दोस्तों ये काफी सामान्य बात है, डर तो सभी को लगता है। जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो हमारे मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लोग हम पर हंसेंगे तो क्या होगा, अगर हमारी मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा। दोस्तों ये जो सारे सवाल हैं वो हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन अगर हम सपने पूरे करने के लिए तत्पर हैं साथियों, तो हमें ये याद रखना है कि डर रास्ता नहीं रोकता, डर के कारण लिया गया फैसला रास्ता रोक देता है। साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता साथियों, साहस का तो मतलब है कि डर के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है। साथियों आजकल हम अपनी जिंदगी कम और दूसरों की जिंदगी ज्यादा देखने लगे हैं। वह आगे निकल गया, उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, उसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन श्रोता साथियों किसी की पूरी कहानी हमें नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ उसका परिणाम दिखाई देता है। उसके पीछे की उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, धैर्य नहीं देखते हम। इसलिए तुलना नहीं बल्कि सपनों से प्रेरणा आप लीजिए। सफलता कभी श्रोता साथियों अचानक नहीं मिलती, सफलता प्राप्त करने के लिए ढेर सारा संघर्ष करना पड़ता है। साथियों कोई भी पेड़ एक रात में फल नहीं देता, उसे समय लगता है, उसे धूप भी सहनी पड़ती है और बारिश भी सहनी पड़ती है। ठीक वैसे ही इंसान की मेहनत भी धीरे धीरे फल देती है साथियों। अगर आज आपने मेहनत की है तो उसका परिणाम श्रोता साथियों कल भी आपको नहीं मिले, फिर भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हर प्रयास हमें पहले से बेहतर बनाता है। इसलिए श्रोता साथियों सपनों की सच्चाई को पहचानिए, उसके पीछे के लक्ष्य को पहचानिए श्रोता साथियों। अगर आप सपनों में जीना शुरू कर देंगे तो आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ दोस्तों क्या आपको पता है कि सपनों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये नहीं है कि वो पूरे हो जाएं, बल्कि ये है साथियों कि उन्हें पूरा करने की जो यात्रा होती है वो हमें पूरा बदल देती है। हम अधिक धैर्यवान बन जाते हैं, अधिक समझदार बन जाते हैं, जिम्मेदार बन जाते हैं साथियों, और आत्मविश्वासी बन जाते हैं, और यही बदलाव हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। तो इस तरीके से श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से
मेरी आज आपसे ढेर सारी बातें हुई। हमने बात की कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, और हमें सिर्फ सपनों को सोचना नहीं है बल्कि उसे जीना शुरू कर देना है। तो बातें जैसा कि ढेर सारी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी साथियों कि सपनों को पूरा करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक सच्चे इरादे की, रोज की छोटी छोटी कोशिशों की और हार मानने से इनकार करने की सोच की। साथियों, जो लोग अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहते हैं वे अक्सर परिस्थितियों का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों को जीना शुरू कर देते हैं साथियों, वे परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में बदलना सीख लेते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, जिंदगी कभी एक ही दिन में नहीं बदलती, यह हर सुबह लिए गए छोटे फैसलों, हर शाम की गई ईमानदारी से मेहनत और हर असफलता के बाद दोबारा उठ खड़े होने के साहस से बदलती है। इसलिए अपने सपनों को भविष्य की किसी तारीख पर मत टालिए, उन्हें आज की आदत आप बनाइए, आज की सोच बनाइए और आज के कर्म में उतारिए। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में, एक नई सोच के साथ में और जीवन को आगे बढ़ाने वाली एक नई प्रेरणा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।